0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 5:05 हो चुके हैं और प्यारा सीने दिन लग चुका है। 18 अगस्त आ गई भाई, क्या करें। बाहर बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं और हवा में ठंडक है और दिल में एक अजीब सा सुकून। ऐसी सुबह में पुराने गाने और भी प्यारे लगते हैं ना, बिल्कुल लगते होंगे। खिड़की थोड़ा सा खोलिए, बारिश की खुशबू लीजिए और इस मौसम को दिल से महसूस कीजिए। गुड मॉर्निंग, RM2 रेडियो मस्ती पर राइज एंड शाइन में आप सबका स्वागत है। आज की सुबह बस आपके लिए, मैं हूँ आपके साथ पूनम। इंजॉय कीजिए अपने गाने और आपकी मॉर्निंग को।
0: राइज एंड शाइन, स्टार्ट फ्रेश, स्टे शार्प, वेक अप विद द वर्ल्ड। वेलकम टू RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 14:14 हो चुके हैं दोस्तों, सुबह हो गई है, साथ में प्यारी सी चाय हो, पास में कोई अपना हो, फैमिली हो, बच्चे हो या अभी तक चाहे वो सो रहे हो, पर आप जानते हैं कि वो पास हैं, तो आराम से उठिए, गाने चलाइए ताकि सुबह पीसफुल शुरू हो। और अगर कोई साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ पूनम, इन्जॉय कीजिए मेरी कंपनी को। और मैं साथ में इतना ही कहूँगी कि अगर आपको भी कोई मैसेज देना है या कोई प्यार की ऐसी बात कहनी है किसी अपने के लिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं 5499124 पर। हम यहीं पर हैं आपके मैसेजेस के साथ, थोड़ी देर बाद आपके मैसेजेस लेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए, अपने ब्रेन को रिलैक्स कीजिए।
0: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 5:28 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ. और अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में दीवाना हुआ बादल. और सच बात है आज बाहर थोड़ा सा दीवाना हो ही गया है बादल, क्योंकि हमें ये चाहिए भी था. हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से बारिश मॉरिशस का रुख देख ले और कहे कि हाँ मैं आ गई, अब नहीं जाऊँगी, बस थोड़ा सा आते रहे, बरसती रहे और हमारे सारे रिजर्वा भर जाए. तो यही तो चाहिए हमको भाई, पानी, खाना और मुस्कुराहट. चलिए भाई इसके साथ साथ हम लेते हैं 2-3 मैसेजेस. जैशन, टिम्बार, जीबुन, उमरियान, दानो, अंगूठिया, आकाश, श्रवण एंड रामदेवर एंड मिस्टर मेविन साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं गाना आप सबके लिए. सुरेश शर्मा, साजदा भी जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि त्रियोली में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो इंजॉय कीजिए बारिश को, थोड़ी बकेट बकेट भर लीजिए. और हम तो कहेंगे कि थोड़ा सा इसी पानी के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर लीजिए, बट थोड़ी सी ठंडक है कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे ही सही. साधना मुकेश लालमाटी से साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को. नसरीन जी के लिए बहुत सारा प्यार सायरा बानो एंड अब्दुल जी की तरफ से. ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और सभी को कह रहे हैं गुड मॉर्निंग. और जो नाइट शिफ्ट करके अपने घर की ओर जा रहे हैं उनको कह रहे हैं गुड नाइट, आराम से सोइएगा. और ठंड है थोड़ी बाहर आपके मॉरिशस में, तो हम तो इतना ही बोलेंगे थोड़ा सा हीटर वीटर चला लो. अरे हमारे यहाँ हीटर की ज़रूरत नहीं है, बस एक ब्लैंकेट ही बहुत होता है. धनेश्वर जी अपने साथ दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी यानी सुनीता जी के साथ में. इंजॉय कीजिए अपने गानों को और साथ में इतना ही बोलेंगे, अपने मैसेजेस देना बिल्कुल मत भूलिएगा 5491294 पर. मैं यहीं हूँ आपके साथ. एक प्यासा गाना आ रहा है आपके लिए यशुदास की आवाज़ में, इंजॉय कीजिए इस गाने को.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: 5:43 हो चुके हैं दोस्तों. गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ पूनम. सुबह हो गई है तो कल की बातें वहीं छोड़िए और आज को पूरे जोश से अपनाइए. चलिए देखते हैं आज आपका राशिफल आपके लिए क्या लेकर आया है. सबसे पहले
1: एरीज मेष राशि.
0: आज सुबह कोई अच्छा विचार मन में आ सकता है, उसे सिर्फ सोचिए नहीं, उसको आगे लेकर जाइए. आपकी हिम्मत आज आपका काम बनाएगी. लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 3.
1: टॉरस वृषभ राशि.
0: आज छोटी बातों में भी खुशी ढूंढिए. काम अपनी जगह है, खुद को थकाना जरूरी नहीं. शाम को थोड़ा समय अपने पसंदीदा काम को दीजिए. लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 6.
1: जेमिनी मिथुन राशि.
0: आज लोगों से जुड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा. आपकी एक मजेदार बात माहौल बदल सकती है. नया मौका दिखे तो उसे हाथ से जाने मत दीजिए. लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5.
1: कैंसर कर्क राशि.
0: आज किसी अपने की आपको जरूरत हो सकती है. थोड़ा समय और थोड़ी केयर बहुत काम आ सकती है. अपना मूड भी हल्का रखिए और दूसरे के साथ जुड़े भी रहिए. लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2.
1: लियो सिंह राशि.
0: आज खुद को पीछे रखने का दिन नहीं है. जो आता है उसे कॉन्फिडेंस के साथ दिखाइए. तारीफ मिले तो मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए. लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1.
1: वर्गो कन्या राशि.
0: आज सुबह अपनी प्रायोरिटीज तय कर लीजिए. एक एक काम करेंगे तो दिन आसान रहेगा. और हाँ, बीच में अपने लिए ब्रेक भी जरूरी निकालिए और आज नून में कुछ अच्छा खाइए जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और थोड़ी सी एनर्जी मिले. लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 4.
1: लीब्रा तुला राशि.
0: आज किसी की तारीफ दिल से करके देखिए. आपके दो अच्छे शब्द किसी का दिन बना सकते हैं. प्यार बांटेंगे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा. लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7.
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
0: आज किसी बात को लेकर ज्यादा सोचिए मत. जो सही लगे उस पर पूरा भरोसा रखिए. आपकी हिम्मत आज आपकी ताकत बनेगी. लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 8.
1: सजिटेरियस धनुराशि.
0: आज रूटीन से थोड़ा हट कर चलिए. कोई नया अनुभव दिन में मजा ला सकता है. कोई अच्छी बात हो सकती है. ऑफिस में लोग आपकी तारीफ करेंगे. अगर घर में है तो घर में जो लोग हैं वो आपकी बात की तारीफ करेंगे. अपनी हैप्पी एनर्जी दूसरों तक पहुंचाइए. लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9.
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
0: आज अपनी प्रोग्रेस को भी थोड़ा नोटिस कीजिए. हर दिन सिर्फ अगला काम करने के लिए नहीं बना है. खुद को शाबाशी देंगे तो एनर्जी और बढ़ेगी. कई बार आप अपने आप को ही अवॉइड कर देते हैं, इसलिए अपने आप को देखते रहिए, शाबाशी देते रहिए. लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 6.
1: एक्वेरियस कुंभ राशि.
0: आज कोई अलग आइडिया अचानक क्लिक कर सकता है. उसे लोगों के सामने रखने में हिचकिचाइए मत. अपना नया अंदाज पसंद जो आपने किया है उसको खुद को पसंद कीजिए. लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 5.
1: पाइसेस मीन राशि.
0: आज अपने दिल को भी थोड़ा खुश रखिए. पसंदीदा गाना, अच्छी कंपनी या थोड़ी मस्ती चुनिए. खुश मन से दिन की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है. लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 3. तो दोस्तों, राशि सुनकर अच्छा लगा होगा. अपने मूड को अच्छा रखिए और अपने दिन को बेहतर बनाइए. और हम तो आप सबको यही बोलेंगे, अपने दिन को शानदार बनाइए. इंजॉय कीजिए अपने गाने और आप सभी को गुड मॉर्निंग.
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती. Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: छिपे से सुन पाएंगे आप संक्षिप्त समाचार।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check. सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से. विधिमा आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को नमस्कार. डर्बन में आयोजित 46वें सादिक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा करने और एक मजबूत सादिक के निर्माण के लिए एकत्र हुए, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल हुए. समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, ये शब्द पिछले गुरुवार से चर्चा में है जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने पॉइंट डिस्नी समुद्र तट का दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच का जायजा लिया. कुछ संपत्ति मालिक अपनी समुद्र किनारे की जमीन की बाढ़ सार्वजनिक क्षेत्र तक बढ़ा रहे हैं. इसी बीच फेसबुक पेज पीमाएफओ पर 2024 की मंत्री की एक पुरानी पोस्ट सामने आई, जिस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया. आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों, विशेषकर चिकित्सा कारणों से दी जाने वाली अनुमति के लिए एक नया दिशा निर्देश ला रहा है. इसके तहत आगे की विंडस्क्रीन और साइड विंडो से कम 75% रोशनी अपनी आनी चाहिए. मंत्री उस्मान माउमेट के अनुसार इस संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जाँच हेतु एक नई वेरिफिकेशन प्रणाली तैयार की जा रही है. विदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान समझौते के बीच अमरीकी सहयोगी ओमान को रास्ते में आने पर बम से उड़ाने की धमकी दी. और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल. जोरदार एंटीसाइक्लोन स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण नम और अस्थिर हवाएं बह रही हैं. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह देश भर में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा. दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटो पर वर्षा होगी. कभी कभी जोरदार वर्षा हो सकती है, खासकर ऊंचाइयों पर. कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा. अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24, तटवर्ती इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात के दौरान देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर जोरदार बारिश होगी. ऊंचे इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है. दोपहर बाद को लगूनों में समुद्र की स्थिति में सुधार आएगा. आज सुबह 6:30 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:57 पर सूरज ढल जाएगा. तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपसे मुलाकात होगी 6:30 बजे. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

We'll be right back.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:16 हो चुके हैं दोस्तों, मैं तो सभी को कहूँगी गुड मॉर्निंग और आप सबका वेलकम है आप ही के प्रोग्राम राइज एंड शाइन में। आज आप इतना इंतज़ार कैसे कर रहे थे इस बारिश का, मतलब यहाँ पर जो भारत तूफान जैसा लगता है कि भाई बहुत बारिश है, पर यहाँ पर जो आप लोगों ने मैसेजेस का डाला हुआ ना तूफान, बहुत ही ज़बरदस्त है। सब इतना खुश हैं, वो कह रहे हैं अरे बारिश आ गई, रेन आ गई, या उन्होंने इतने सारे नाम दे दिए हैं इसको कि कहते हैं कि भाई आज मूड बहुत अच्छा हो गया। तो मुझे पता है कि आज का मूड अच्छा इसलिए भी हो गया है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आप लोगों को थोड़ा सा सुकून भी मिलेगा, पर आपको ऑफिस जाना है तो हम तो आपको यही कहेंगे थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके जाइएगा, थोड़ी सी मस्ती के साथ जाइएगा, थोड़ा मुस्कुराते हुए जाइएगा। ये नहीं जो बस में जा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे सैड से बैठ के जाए, बिल्कुल अरे आंखें बिल्कुल ओपन करके थोड़े से एनर्जेटिक होकर और एहसास होना चाहिए दूसरा जो साथ में बैठा है, अरे देखो कितनी ब्यूटीफुल चेहरा है, कितनी मुस्कान है और चेहरे पर शाइन है, बस जब ये होता है ना तो सबसे अच्छा लगता है। चलिए भैया आपके 2-3 मैसेजेस लेते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुया बिहारी जी और साथ में कह रही हैं बारिश आ गई क्या बात है। यस यस थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे टू रीता इमरित, क्या बात है, हैप्पी बर्थडे रीता जी, आपको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको भी बहुत सारी विशेष। तैरन श्वेता रविश प्रशा लोवेश आबादू फैमिली एंड मालिनी जी गुड मॉर्निंग आपको, भारती जी साथ दे रही हैं इंजॉय कर रही हैं, ज्योति जी पूरे परिवार के साथ बेस्ट विशेष दे रही हैं सबको और सभी को ये कह रही हैं कि बस बारिश है थोड़ा सा अपना अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल थैंक यू सो मच। श्याम देवी चरण जी साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं गरम गरम चाय पी रहा हूँ इलायची वाली और अगर किसी को पीनी है तो घर आ जाओ। थैंक यू सो मच सर आपने इनवाइट किया, वेलकम है आपका भी यहाँ पर रेडियो स्टेशन में, अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर आइए। रेखा जी एंड सन अंश के लिए बस इतना कहना चाहती हैं अंश पढ़ाई कर बाकी सब मैं कर लूँगी, क्या बात है, मुझे पता है कि हर माँ अपने बच्चे के लिए पूरी शिद्दत से लगी रहती है, पर अंश आप भी ज़रूर अपनी मामा के लिए वो सब कुछ करना जो उनकी

0: कोई इच्छा है। थैंक यू सो मच आप सभी का, किशन रघुनाथ जी साथ दे रहे हैं और जिया रिया और अपनी वाइफ माला जी को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बहुत प्यार करता हूँ तुम लोगों से और बस तुम लोगों के बिना जी नहीं पाता, इसीलिए सुबह सुबह आ जाता हूँ तुम्हारा चेहरा देखने। क्या बात है, थैंक यू सो मच आप सभी का। इन्जॉय कीजिए इन गानों को और 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरे विस्तार से समाचार। और इसीलिए हम कहते हैं जो ऑफिस जाने वाले हैं अपना अपना ख्याल रखिए और साथ में निकालिए वो कपड़े जो गर्म हो।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: सुबह के ठीक 6:30 हैं। नमस्कार, मंगलवार 18 अगस्त 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज की सुर्खियां इस प्रकार हैं। डर्बन में आयोजित 46वें सादिक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा करने और एक मजबूत सादिक के निर्माण के लिए एकत्र हुए, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल हुए। समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, ये शब्द पिछले गुरुवार से चर्चा में है, जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने पैंडिस ने समुद्र तट का दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच का जायजा लिया। आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों, विशेषकर चिकित्सा कारणों से दी जाने वाली अनुमति के लिए नए दिशा निर्देश ला रहा है। इसके तहत आगे की विंड स्क्रीन और साइड विंडो से कम 75% रोशनी आनी चाहिए। और विदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान समझौते के बीच अमरीकी सहयोगी ओमान को रास्ते में आने पर बम से उड़ाने की धमकी दी। सादिक के सदस्य देशों के 16 नेता 46वें राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के लिए कल सोमवार को डर्बन में एकत्र हुए। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी इस बड़े इलाकाई सम्मेलन में अपने समकक्षों के साथ उपस्थित रहे, ताकि खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य एक और अधिक मजबूत सादिक का निर्माण करना है।
1: डर्बन में सादिक की 16 सदस्य देशों के नेता सोमवार सुबह 46वीं सरकारी व राष्ट्र नेताओं के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के लिए एकत्र हुए। इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल रहे, जिनका स्वागत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने डर्बन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया। सादिक की अध्यक्षता संभाल रहे दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय समुदाय के भविष्य पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी राष्ट्र नेताओं का आभार व्यक्त किया। औपचारिक समारोह के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री की उपस्थिति का भी विशेष उल्लेख किया गया।
2: फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस वी वेलकम ऑनरेबल Dr. Navi Chandra Ramgoolam, Prime Minister.
1: लचीले, टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकरण के तहत आयोजित इस 46वें शिखर सम्मेलन में बुनियादी ढांचे के विकास तथा कृषि और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में बदलाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण को और मजबूत करना है।
3: We must turn our

0: Southern Africa.
1: इससे पहले सादेक के कार्यकारी सचिव एलियास एमपेडी मागुजी ने आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सादेक की रणनीतिक भूमिका पर जोर दिया, खासकर एक ऐसे समय जब दुनिया अनेक चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना कर रही है।
2: Our ambition must be to move beyond the export of raw materials and position SADC as a globally competitive center for beneficiation, value addition, manufacturing, innovation, and indeed the industrialization we are pursuing.
1: उद्घाटन समारोह में अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ तथा सादेक के पदमुक्त अध्यक्ष जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगागुआ के संदेश भी शामिल थे, जिन्होंने क्षेत्र में अधिक एकता और एकजुटता का आह्वान किया। उद्घाटन समारोह का समापन जिम्बाब्वे से दक्षिण अफ्रीका को सादेक की अध्यक्षता के आधिकारिक हस्तांतरण के साथ हुआ। शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों और अंतिम घोषणा की प्रतीक्षा के बीच नेताओं ने कई क्षेत्रों में प्रगति करने की अपनी इच्छा जताई। आर्थिक एवं औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, शांति और स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के प्रति मजबूती तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दक्षिणी अफ्रीका की आवाज़ को और मजबूत करना।
3: लगभग एक हफ्ते बाद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत कल सोमवार 17 अगस्त को दो और पुलिस अधिकारियों से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। ये हैं सेवानिवृत्त पुलिस सर्जेंट लुई क्लिफोर्ड मुइज, मिकाएल ऑजेंड्रा और सर्जेंट विद्युत जीवन। माना जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ी रकम हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसे रिश्वत या अनुचित लाभ माना जा सकता है। मंगलवार 11 अगस्त को कांस्टेबल ऋषि गनौरी और सर्जेंट रामकृष्ण सिंह नंद राम से भी एफसीसी में पूछताछ की गई थी। ये जांच 30 मार्च 2024 को स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट की स्पेशल इंटेलिजेंस सेल की एक टीम द्वारा वाली दे प्रेत के एक निवासी के घर पर की गई छापेमारी के अभियान से संबंधित है। घटना के समय दोनों पुलिसकर्मी इसी यूनिट में तैनात थे और उस अभियान में भाग लेने वाली टीम का हिस्सा थे। समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, पिछले गुरुवार से ये शब्द बहुत सुनने को मिल रहे हैं, जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने समुद्र तटों तक पहुंच का जायजा लेने के लिए पॉइंटिस ने समुद्र तट का दौरा किया था, क्योंकि कुछ लोग अपनी समुद्र के किनारे स्थित संपत्ति की बाढ़ को इन सार्वजनिक स्थानों तक बढ़ाने की अनुमति दे रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज पीमा एफओ पर समुद्र के किनारे एक आवास की खरीद को लेकर 2024 में मंत्री द्वारा की गई एक पोस्ट सामने आई, जिस पर शकील मोहम्मद ने कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए तुरंत जवाब दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉरिशस में समुद्र तट सभी के लिए सुलभ है, इसलिए कोई निजी समुद्र तट मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे भूखंड जरूर हैं जिन्हें सरकार लीज पर दे सकती है। प्रणव बिहारी, रजनी बिकर।
4: सीमांकन को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मॉरिशस की कानून प्रणाली तट और ज्योमेट्रिक चरण के बीच अंतर करती है। तट लो वाटरमार्क और हाई वाटरमार्क के बीच स्थित होता है। इस क्षेत्र पर स्वतंत्र आवाजाही कानून द्वारा संरक्षित है और इसे अवरुद्ध करना प्रतिबंधित है, और इसे हाई वाटरमार्क से 1807 से तय किए गए नियमों के अनुसार जमीन के भीतर की और लगभग 81 मीटर से अधिक की चौड़ाई में ज्योमेट्रिक चरण शुरू होते हैं। ये द्वीप के चारों ओर फैले हुए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 2110 हेक्टर है, और ये सभी पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है। कानून के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति इनका मालिक नहीं बन सकता है, लेकिन इससे उनका लीज पर दिया जाना बाहर नहीं होता है, जैसा कि होटलों और कुछ रियल इस्टेट परियोजनाओं के मामलों में पहले से ही है। हालांकि सरकार द्वारा दिए गए ये लीज किसी भी स्थिति में तट के निजीकरण की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए पहुंच को सीमित करने के वास्ते कोई विभाजन या बैरियर नहीं लगाए जा सकते। वही नियम सार्वजनिक समुद्र तटों पर भी लागू होते हैं, जिनमें बीच अथॉरिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हाई वाटरमार्क और लो वाटरमार्क से 100 मीटर की दूरी के बीच का क्षेत्र शामिल है।
3: आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों की टिंटेड शीशों खासकर चिकित्सीय कारणों से दी जाने वाली अनुमति के आवेदनों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू करने की तैयारी कर रहा है। वाहन की सामने की विंड स्क्रीन और आगे की साइड विंडो से कम

0: 70% रोशनी अंदर आनी चाहिए, हालांकि 5% की अतिरिक्त छूट की अनुमति होगी। नए दिशा निर्देशों में ये भी स्पष्ट किया जाएगा कि किन बीमारियों के मामलों में अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा और दस्तावेजों की जांच के लिए एक वेरिफिकेशन प्रणाली भी लागू की जाएगी। आंतरिक परिवहन मंत्री उस्मान माहमूद के अनुसार ये दस्तावेज फिलहाल तैयार किया जा रहा है। मंत्री उस्मान माहमूद को सुनते हैं, जिनसे बात की राजमिला सीतामणि ने। Vivaran Abhyudaya ka hai.
1: रास्ते पर ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके शीशे टिंटेड हैं, यानी बाहर से आसानी के साथ अंदर में क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे सकता है, परंतु गाड़ी के आगे और उसके दाएं व बाएं के शीशे ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होने चाहिए, ये नियम के अनुसार है। फिर भी ऐसे भी लोग हैं जिनकी चिकित्सा संबंधी समस्या है, तो उन लोगों के लिए नियम में कोई सुधार नहीं लाया गया था। हमने एक दस्तावेज तैयार की है जो अन्य देशों में इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है और वहां पर किस तरह के कदम उठाए जाते हैं इस पर भी हमने उसको शामिल किया है। इस दस्तावेज में हमने नए गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देशों को शामिल किया ताकि भूमि व परिवहन मंत्रालय के परमानेंट सचिव ये फैसला ले सकेंगे कि उस व्यक्ति की गाड़ी के आगे दाएं व बाएं के शीशे टिंटेड होने चाहिए या नहीं।
0: अगले महीने 10 और 11 सितंबर को मॉरिशस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक डाहन तांग की मेजबानी करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य मॉरिशस और विपो के बीच सहयोग को मजबूत करना है, साथ ही ये बौद्धिक संपदा और नवाचार को बढ़ावा देने से जुड़े कई मामलों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। विदेश मामलों के जूनियर मिनिस्टर हाजे नलसिंगन के अनुसार चर्चा मुख्य रूप से पैरेलल इंपोर्ट लाइसेंसेस और पेटेंट पर केंद्रित होगी। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर व्यापार और स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ कई कार्य सत्र आयोजित किए जाने की योजना है। मंत्री राजे नलसिंगन को सुनते हैं, जिनसे बात की राजमिला सीतामणि ने। विवरण अशिता रघु का है।
2: Donc vous interdit avec beaucoup de précautions, c'est bien interdit, pourquoi pas baisser le prix, mais bien aussi assurer la qualité. Mais pas juste le parallèle importation, parallèle licensing, on a plusieurs manichures qui nous disent amendent nos législations. Donc ils prennent l'occasion, nous gagnent pour parler, une discussion avec le directeur général là. Et nous faisons une requête aussi, et ils pourraient avoir les autres experts qui vous viennent Maurice bientôt pour aider nous pour développer une stratégie.
0: और विदेश के खबरों में फॉक्स न्यूज़ के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बम से उड़ाने की धमकी दी है यदि वो ईरान के साथ उनके प्रशासन की अपनी बातचीत के रास्ते में आता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए अमेरिका और ओमान तेहरान के साथ अलग अलग बातचीत कर रहे हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग हैं। ये अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान लगभग 6 महीनों से काफ़ी हद तक बंद रहा है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। एक जोरदार एंटीसाइक्लोन स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है जिसके कारण नम और स्थिर हवाएं बह रही हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह देश भर में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्रांतों पर वर्षा होगी। कभी कभी जोरदार वर्षा हो सकती है खासकर ऊंचाइयों पर। कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान देश के पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर जोरदार बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुँच सकती हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। दोपहर बाद को लगूनों में समुद्र की स्थिति में सुधार आएगा। सूर्योदय 6:30 बजे और आज शाम 5:57 पर सूरज ढल जाएगा।

0: 20 मिनट हुए हैं, थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। एसएसओ रोड इलो कांस्टेबल में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती बुलक, पैदाशी नाम पुनीत और जो बंधु नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके पति श्री राधा किशन बुलक के घर एसएसओ रोड इलो कांस्टेबल से उठाकर कांस्टेबल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। सिवेंचिनियन रोड गुडलैंड्स में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री मदेमुतु चिनियन, जो मुकेश चिनियन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे विलेन चिनियन के घर सिवेंचिनियन रोड गुडलैंड्स से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। स्वामी शिवानंद एवेन्यू फ्लोरियाल में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कमलावती राधा लक्ष्मी नरचा, पैदाइशी नाम भी सिसर और जो अनिता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति सिवन रचिया के घर स्वामी शिवानंद एवेन्यू फ्लोरियाल से उठाकर आलिब्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रेलवे रोड हाईलैंड्स में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री दनीलाल सुलिक, जो सूर्यदेव नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले क्यूपिप नगर पालिका के पुराने कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती बसंती सुलिक के घर रेलवे रोड हाईलैंड्स से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 11 स्थिति से आशा दीपिने में 25 साल के 25 ईयर्स ओल्ड के श्री केसावेन वीरेन, जो केसावेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पिता श्री वीरेन कृष्णा के घर नंबर 11 स्थिति से आशा देपिने से उठाकर खौन रोजाली की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रामपॉइंट स्ट्रीट विल्नोमीबर्ग में 37 साल के 37 ईयर्स ओल्ड के श्री कमलेश आदिंगाडू, जो मोगाम्बो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी माँ श्रीमती लक्ष्मी आदिंगाडू के घर हॉम स्ट्रीट विल्नोमीबर्ग से उठाकर तोंबोमीबर्ग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शिवाला रोड मध ऑस्ट्रेलिया में 46 साल की 46 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शास्त्री कावलीसर, पैदाइशी नाम बिगन और जो वीणा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर शिवाला रोड मध ऑस्ट्रेलिया से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मंडपलेन मिडलैंड्स में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री राज नोयन, जो बुबुनु नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर मंडप लेन मिडलैंड से उठाकर मिडलैंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मोरा पेटिट रिवियर में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री सिपासाद सिंह मंगला, जो अजीत नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे भी 24 बंगाली स्ट्रीट लातू के निकट साबले रहते थे। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे मोरा पेटिट रिवियर से उठाकर सिपाही ब्रुले वाले दे प्रेट की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। सावन रोड नोवेल फ्रांस में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धर्मावती मंदारी, पैदाइशी नाम रामचंद, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे संजीव मंदारी के घर सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कांगुल बुमेग्रनिये में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री विती कतों, जो सिंगा नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर कांगुल बुमेग्रनिये से उठाकर कांगोपाल शामुनी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बसंत राय रोड लाहौजा में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री अशोक कुमार सिपुल, जो संजय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। ओकीडे लेन अमोरी में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की कुमारी नगेश्री रामसरन, जो सुमंती नाम से भी जानी जाती थी कि

0: मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर, उनकी माँ सुचिता माता बदल के घर ओकिदेलेन आमोही से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट नून। आनंद रोड लेस्पेरांस से त्रिबुशे में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती रामलगन पैदायशी नाम गोबिंद और जो परमावती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे विक्रम रामलगन के घर आनंद रोड लेस्पेरांस त्रिबुशे से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30। ग्रेसलिन खुशनुआ में 48 साल के 48 ईयर्स ओल्ड की श्री शैलेश कुमार गुडा जो कोको नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती रीना गुडा के घर ग्रेसलिन खुशनुआ से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30। पालमा एवेन्यू क्वाटर कोको में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय रामेश्वर जो ये शुफ़ टैक्सी नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुरेखा रामेश्वर के घर पाल्म एवेन्यू क्वाटर कोको से उठाकर लावांचुया के शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: कुछ नहीं ठहरता ना पंचम, कभी भी कहीं भी, ना तुम ठहरे ना मैं ही रुकूंगा। मैं क्या बताऊं कि बहता दरिया जब आ रहा था तो जा रहा।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:55 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। जिस काम के लिए इतनी पढ़ाई की, इतने इंटरव्यूज दिए, अब इंटरेस्ट नहीं रहा, रुके, खुद से बात कीजिए। आज है इंटरनेशनल नेवर गिव अप डे, तो आज हार मानने का सवाल ही नहीं। ब्रेक लीजिए पर पीछे मत हटिए और देखिए आज तो ट्रिपल खुशी है, गुलजार साहब का जन्मदिन है जिनकी शायरी हम आज तक इंजॉय करते हैं और साथ ही है जन्मदिन दिलेर मेहंदी साहब का, तो बेस्ट विशेज से आज पूरा दिन उनके गानों और शायरी के साथ इंजॉय कीजिए। आगे बढ़ते रहिए, मेरे बाद आपको साथ मिलेगा वेदिता का। मेरे जाने की है, अब बाय बाय करने का टाइम आ चुका है और उनका हाई करने का टाइम आ चुका है, तो इंजॉय कीजिएगा मेरे बाद मॉर्निंग बीट को साथ रहिएगा। तो मैं तो कहती हूँ एक प्यारा सा गाना आपको सुना दें दिलेर मेहंदी साहब का, सुनाते हैं आपको।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: भाई कहाँ जेंजी की आज की वो स्टाइल और कहाँ हमारे जमाने के तम्मा तम्मा. हम भाई उनसे ये खतरनाक डांस तो कर ही नहीं सकते, लेकिन तम्मा तम्मा के साथ कोई बात नहीं. कभी कभी बॉडी साथ नहीं देता, इस उम्र में वैसे भी ऐसा हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तम्मा तम्मा अपने मन में ही कर लेते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती. सुबह के 7:09 हुए हैं. टुडे वी आर 18th of August. मैं वेदिता आप सबों का वेलकम करती हूँ. वेलकम टू मॉर्निंग बीट. कैसे हैं आप, कैसे हैं?

0: हाल चाल सब बढ़िया सब ठीक चलो तो हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए और रेडियो मस्ती पर मस्ती नहीं होगी ऐसा तो आप सोच ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई आता है यहाँ पर सिर्फ मस्ती ही करने आता है तो चलिए इसी के साथ हम और आप साथ साथ रहेंगे और साथ रहेंगे सुबह के 9 बजे तक यू कीप ऑन डांसिंग क्योंकि यहाँ पर जैसा आपको पता ही है अभी मैं और पूनम एक्चुअली तारा रारा कर रहे थे तो मैंने सोचा कि तारा रारा आपके साथ भी करेंगे तो साथ देते रहिए And keep listening to Radio Musti.
1: RM2.
2: Radio Musti.
3: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dip à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Morning Bee.
4: Oh God. One more remix.
1: A good beat for your morning show.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: Radio Musty.
1: Ou pe import climatisé ou frigidaire, nouveau règlement par Energy Efficiency Management Office, IEMO, applique pour tout ban importateur et particulier qui peut importer ban l'appareil pour vendre ou soit pour votre propre cuisine, bureau ou la case. Sa nouveau règlement là assure qui ban l'appareil là respecte ban norme l'énergie. Alors, avant de faire ou ban démos pour importer aircon ou frigidaire, assurez qui ou fin enregistrer comment importateur et qu'enregistrer ou l'appareil avec IEMO. La douane, pas pour autoriser ou dédouane ou cargaison, si vous pouvez un certificat IEMO. Pour plus d'informations, contactez Energy Efficiency Management Office, l'eau 206 80 70.
0: RM2
2: Radio Musty.
0: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
3: हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियो मस्ती। चलिए इसी के साथ अभी समय हो गया है एक गेम का, एंड यस, जीतने वाले को क्या मिलेगा? वैसे जीतने वाले को मिलेगा मौका जी हाँ, मौका मिलेगा क्या करने के लिए। वैसे आपने कई सारे कॉन्सर्ट्स जो हैं आपने असिस्ट किए होंगे, उनमें से एक ऐसा कॉन्सर्ट जो आपके होश उड़ा दे। जी बिल्कुल, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली। कौन? बताती हूँ पहले गेम के बारे में बता दो। यस, द गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.mu। अब सोचो, आंखें बंद करो एंड लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज, मेमोरीज एंड द टाइमलेस वॉइस ऑफ द वन एंड ओनली Shan, yes, and now RM2 Radio Musty is giving you the chance to experience this magic live. So, aap Radio Musty ke saath khel sakte hain and stand a chance to win a gold ticket to assist this spectacular Shan live concert. One voice, one stage, one unforgettable night at SBICC on 5th of September. Aur ye hoga kab? 8 p.m. Proudly organized by ticketbox.mu. To chaliye isi ke saath main aapko bataun ki yahan par aapko mil raha hai ye gold ticket, aur ye gold ticket paane ke liye aapko mujhe mere sawal ka jawab dena padega. Yes, aapko mujhe batana padega ki singer Bollywood ke jo jaane maane singer hain Shan, unka pura, unka asli naam kya hai? On 5491294. Enjoy the melody, enjoy his voice. Just feel the love.

0: जस्ट इमेजिन एक ऐसा कॉन्सर्ट जहां पर ये खूबसूरत सा गाना शान आपके लिए गा रहा है, सभी के जो मोबाइल्स हैं उसका टॉर्च ऑन है एंड यू जस्ट वेविंग एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग्स. वाओ, सोचने में इतना अच्छा लग रहा है ना.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: दोस्तों, शान इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट बिलवड प्लेबैक सिंगर्स एंड उनकी जो आवाज़ है ना, बहुत ही स्मूथ, सोलफुल, वर्सटाइल वॉइस है उनकी. एंड ही रोज टू प्रोमिनेंस इन द लेट 90s और फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना जादू चलाया, एक फैमिलियर वॉइस इन बॉलीवुड थ्रू रोमांटिक, मेलोडिक एंड फील गुड सॉन्ग्स. शान की आवाज़ें आप जब भी सुनोगे ना, ऐसा लग रहा है जैसे ही स्माइलिंग, राइट? ओवर द ईयर शान हैज डिलीवर्ड न्यूमरस मेमोरेबल हिट्स अक्रॉस हिंदी सिनेमा एंड इंडियन पॉप म्यूजिक, अर्निंग अ स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग अक्रॉस जनरेशंस. जी हाँ, आज की भी जो जेंजी है उनको बहुत पसंद करते हैं. हिज वॉर्म वोकल स्टाइल, एफर्टलेस स्टेज प्रेजेंस एंड एबिलिटी टू कनेक्ट इमोशनली विद ऑडियंसेस have made him a popular live performer. So you can enjoy the charismatic energy, a soulful voice and timeless melodies of Shine.

0: स्टेज ऑन 5th of September 2026 आज फ्रॉम 8 PM। तो चलिए जानते हैं कि हमने सवाल किया था कि उनका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर सबको पता है, जब सब इतना प्यार करते हैं तो सबको पता ही होगा कि एक्चुअली उनका असली नाम क्या है। सो गाइज, यहाँ पर काफ़ी सारे जो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने हमें सही जवाब दिया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। चलिए इसी के साथ अभी हम हमारे जो विनर हैं उसका नाम यहाँ पर हम अनाउंस करने जा रहे हैं। सो द विनर इज रानी श्री किशन ऑफ मेबर। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उनका असली नाम है शांतनु मुखर्जी, और मैं आपको बताऊं आपको मिल रहा है यहाँ पर एक गोल्ड टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर लाइव शांत कॉन्सर्ट ऑन 5th of September, और द गेम वाज पावर्ड बाय ticketbox.mu। कंग्रेचुलेशंस। हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको थोड़ी देर में कॉल करेंगे ये बताने के लिए कि आप कैसे आकर अपना ये जो गिफ्ट है ले जा सकती हैं।
1: Morning beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musty, in the mix.

एंड यस दोस्तों, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या आपके कोई फ्रेंड कलीग, डू लेट मी हैव देयर नंबर एंड फोन नंबर फॉर द बर्थडे सरप्राइज ऑन 5491294.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है और उनसे मिलने का समय भी आ गया है. सो हेलो, गुड मॉर्निंग.
3: हाय, गुड मॉर्निंग.
2: दिस इज दीक्षा, राइट?
3: यस
2: दीक्षा, हमने सुना है कि आप गाना गाती हैं, राइट? यू आर अ सिंगर ना, गाना गाती हैं आप?
3: नो, आई जस्ट लिसन टू म्यूजिक.
2: नो, डोंट टेल मी, आप मेरा दिल तोड़ रही हैं. एक्चुअली उन्होंने कहा था कि आप गाना गाती हैं और हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए हमें एक सिंगर की ज़रूरत थी, इसीलिए तो हमने आपको कॉल किया. आप गाना नहीं गाती?
3: नो.
2: थोड़ा सा गा के, तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी ना, आप थोड़ा सा गा सकती हैं हमारे लिए? थोड़ा सा कुछ भी, समथिंग, थोड़ा सा.
3: आई डोंट नो.
2: देखो आपको ऐसे गाना पड़ेगा, सुनो अच्छा से सुनो. हाँ, आपको सारे गमा पा आती है? सारे गमा आपको आती है? यू वांट टू ट्राई, हमें पता चल जाएगा कि आप अच्छा गाते हो. तो बोलो सा रे गा. अब आपको ये गाना गाना है.

0: रेडियो मस्ती।
1: ये वाला गाना गाना आता है आपको? मुझे आता है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू दीक्षा। हैप्पी बर्थडे दीक्षा। वैसे दीक्षा आप रहती कहाँ हो?
2: बुजे बैठी है।
1: ऑलराइट, तो आज

0: तो मौसम बड़ा ही खतरनाक है. सो घर पे ही है क्या? का आज क्या प्रोग्राम क्या है? घर पे ही रहना है?
1: Yes, I will at home.
0: All right.
1: Maybe I will go with my friends.
0: ओहो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी. सो ओके, एंजॉय योर सेल्फ एंड इट्स अ वेरी स्पेशल डे. और हम चाहते हैं कि आप इसको एकदम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें. और बर्थडे जो होता है ना, बहुत खास होता है, बहुत स्पेशल होता है, तो अपने के साथ सेलिब्रेट करना भी बनता है. तो चलिए आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए. हमारी ओर से विशिंग यू अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आपको मैं बताऊँ कि आपको क्या मिल रहा है? हेलो,
1: एक्सक्यूज मी, अगेन.
0: आपको पता है आपको क्या मिल रहा है आज गिफ्ट?
1: नो.
0: आपको मिल रहा है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर, जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा आज नहीं तो कल एट एमबीसी. डोंट फॉरगेट, अपने आईडी कार्ड के साथ आइएगा. आज तो घर पे ही है तो फ्रेंड्स के साथ इधर ही आ जाइए अपना वाउचर लेने के लिए. एंड एंजॉय योर डे. हैप्पी बर्थडे स्वीटी. हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू.
1: थैंक यू.
2: A good beat for your morning show. RM2
3: Radio Musti.
0: जी हाँ दोस्तों, चलिए भाई, हमारा काम होता है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से हम हर रोज़ किसी ना किसी को सरप्राइज करते हैं. चलो आज हमें कोई मिल ही गया और बेचारी ने हमारे लिए सारे गामा पा भी गा दिया. गाना तो मुझे खुद नहीं आता सारे गामा पा, दूसरों को गवा रही हूँ, मार खाऊंगी. चलो इसी के साथ अरविंद के साथ थोड़ा स्पोर्ट्स कर लेते हैं. हमारे दोस्त अरविंद कब से आ गए हमारे साथ तक अपने स्पोर्ट्स अपडेट के साथ?
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट.
0: चलिए मिलते हैं हमारे दोस्त अरविंद. गुड मॉर्निंग टू यू.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RN2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. फीफा ने अपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर केविन लामू को निकाल दिया. सख्त बाय फीफा. केविन लामू ने प्रेसिडेंट इन्फांटिनो के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसीलिए उसे निकाला गया. केविन लामू ने कहा था कि इन्फांटिनो ने जो प्लान बनाया था प्राइवेटाइजेशन का, वो केवल इन्फांटिनो का था, फीफा का नहीं. प्रोजेक्ट आगे नहीं गया पर केविन लामू को जाना पड़ रहा है. फिर भी इन्फांटिनो अभी भी गर्म तेल में है. इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में कल कार्डिफ और रेक्साम के बीच मैच ड्रॉ गया 1-1. मैच के अंतिम सेकंड में कोलविल ने कार्डिफ के लिए इक्वलाइज किया. स्पेन के ला लीगा में भी ड्रॉ मैच, डिपोर्टिवो 1-1. कोपा इटालिया में पीसा और एम्पोली के बीच मैच ड्रॉ 1-1, पेनाल्टी पर पीसा की जीत. फिर सासुएलो 3 सेसेना 0, क्रिमोनेजे 2 सामदोरिया 0, पालेर्मो 2 लेचे 0. आज से UEFA चैंपियंस लीग के प्ले ऑफ खेले जाएंगे, मतलब प्ले ऑफ पार करके सीधे ग्रुप स्टेज में. दिनामो ज़ाग्रेब का मुकाबला विकिंग टीम से, फेनेरबाचे ओलंपिक, लियों लेव्स्की सोफिया एके एथेंस. बाकी मैच कल खेले जाएंगे. क्लब फ्रेंडलीज में आज होफेनहाइम का मुकाबला बायर्न म्यूनिख से होगा. फ्रांस न्यूज, स्पेन का कप्तान स्वदेश लौट आया. कल वो बार्सिलोना पहुंचा अपना ड्रीम मूव पूरा करने के लिए. बार्सा सिटी को 65 मिलियन देगा रोड्री के लिए. सिटी के साथ 12 ट्रॉफीज जीत पाया था, 4 प्रीमियर लीग, 2 एफए कप, 3 ईएफएल कप और 1 चैंपियंस लीग. फिर स्पेन के साथ चैंपियन बना था, वर्ल्ड चैंपियन, जहां उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी दिया गया था. रोड्री जा रहा है तो जवान खिलाड़ी आ रहा है, अयूब बुआदी आ रहा है सिटी में. लिल का मोरक्को इंटरनेशनल खिलाड़ी बुआदी का दाम लगभग 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का है. वर्ल्ड कप में बुआदी मोरक्को के साथ 5 मैच शुरू कर पाया था. केवल 18 साल का है मिडफील्ड खिलाड़ी. बुआदी के अलावा सिटी चेल्सी से एंजो फर्नांडेज को भी साइन करना चाहता है. पहले से इंग्लैंड के इंटरनेशनल खिलाड़ी एलियट एंडरसन को ब्रिटिश रिकॉर्ड फी पर साइन कर लिया है मैनचेस्टर सिटी ने. चेल्सी ने पेड्रो नेटो पर 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का दाम रखा है. अल हिलाल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल और टोटनहम हॉटस्पर सब के सब नेटो के दीवाने हैं. टीम टॉक के अनुसार लिवरपूल पेरिस सेंट जर्मेन से ब्राडली बारकोला के साथ इब्राहिम

0: एनजाइ को भी साइन करना चाहता है। टोटल 155 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, 155 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर दोनों को खरीदना चाहता है लिवरपूल, लेकिन पेरिस सेंट जर्मेन इससे ज्यादा पैसा चाहता है। क्रिकेट, श्रीलंका टेस्ट सीरीज के पहले मैच में अभी के लिए 3 दिनों के खेल के बाद भारतीय टीम की स्थिति मजबूत है। टीम इंडिया ने 462 रनों का लक्ष्य रखा था, इसके जवाब में श्रीलंका की टीम के पहले इनिंग्स में 284 रन पर ऑल आउट हुई, यानी 178 रन पीछे। मानव सूत्र 4 और जडेजा 3 विकेट ले पाए, सो 178 रनों की बढ़त लिए भारतीय टीम आज चौथे दिन के खेल में ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर डिक्लेयर करना चाहेगी। एडवांटेज टीम इंडिया 178 रन की लीड, काफी अच्छी लीड है। That's it, the latest from the sports world. It's a rainy morning. हमारा साथ देते रहिए. I'll catch you very soon. Till then, bye bye.
1: Thank you so much, Arvind.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Jumbo, Quality Deco fin lanceau extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable mais vrai. Bob, des pieds portiers 100 roupies. Des pieds pour 4 pieds portiers 295 roupies. Granit, 8 pieds pour des pieds 2000 roupies. Lavoie portière 3500 roupies. SPC flooring, lordoise, luminaire, sanitaire, robinetterie et plaisir les autres produits à bas prix incroyable mais vrai. Promotion là, 10 pour des semaines seulement. Pour plus de renseignements, check nos pages Facebook Quality Deco.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए दोस्तों, एक और गेम के साथ आए हैं। अब की बारी, समय हो गया है अपने स्किन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने का। यस, आपके लिए हम लेकर आए हैं 40 मिनट हाइड्रा ग्रो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक। तो आपको पता है, यहाँ पर जाने के बाद इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्किन है, इट विल लीव योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश, स्मूथ एंड ब्यूटिफुली रेडियंट। और आपको पता है कि ये जो हाइड्रा ग्रो फेशियल है एट प्राणा क्लिनिक एंड लेजर क्लिनिक, यहाँ आपका जो स्किन है इसको डीप क्लेंस किया जाता है और जेंटल एक्सफोलिएशन होता है, हाइड्रेशन, और ये जो सीरम इन्फ्यूजन होता है आपके स्किन को और भी ग्लोइंग बनाता है। और साथ में ये जो हाइड्रा ग्लो मास्क है, ये तो सोने पे सुहागा है भाई। तो अगर आपको ये 40 मिनट का हाइड्रा ग्लो फेशियल चाहिए तो आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि 1994 की मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। जी हाँ, 1994 की मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। जल्दी से अपने जवाब भेजिए ऑन 5491294।

0: इंडियन एंड फर्स्ट बंगाली वुमन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल. यस, ये है सही जवाब. और हम खेल रहे थे प्राना स्किन के साथ. यहाँ पर आपको मिल रहा है 40 मिनट का हाइड्रा ग्रो फेशियल एट प्राना स्किन एंड लेजर क्लिनिक. और चलिए देखते हैं यहाँ सही जवाब देकर विनर बने हैं कौन. सो यहाँ लकी ड्रॉ के बाद जो नाम आया है वो है शालिनी दोमन ऑफ लिस्पेरेंस पीटों. कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. 40 मिनट्स का हाइड्रा ग्लो फेशियल एट प्राना स्किन एंड लेजर क्लिनिक आपको मिल रहा है. क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन, सीरम इन्फ्यूजन और साथ में हाइड्रा ग्लो मास्क, ऑल डिजाइन टू लीव योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश, स्मूथ एंड ब्यूटिफुली रेडियंट. योर ग्लो स्टार्ट्स एट प्राना. सो कंग्रेचुलेशंस. हम आपको बता दें कि आपका जो गिफ्ट है आपको बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा. थैंक यू सो मच. चलिए इसी के साथ समय हो गया है.
1: Well, this one's original root boy coming at you in a different style. Whoa, sunshine, sun. See the girls and white, and everything is fine. Lay it down, baby.
0: एंड यस, बढ़ते हैं हम 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर. मिलते हैं उस पार आप ही के प्रोग्राम के साथ जो कि है मॉर्निंग बीट.

0: time to Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: 8 बजे हैं. नमस्ते. आवाज़ भोजपुरी में समाचार सुने जा. डर्बन में आयोजित 46वां सार्क शिखर सम्मेलन में सदस्य देश के नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसन साझा चुनौती पर चर्चा करेगी और एगो मजबूत सड़क के निर्माण खातिर एकत्र होलन, जिनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामग्राम भी शामिल रहलन. समुद्र तट से सटल सरकारी भूमि, इस शब्द पिछला बिफे से चर्चा में बाटे, जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद पॉइंटिस ने समुद्र तट के दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तट ले पहुंच के जायजा लेलन. कुछ संपत्ति मालिक अपन समुद्र किनारा की जमीन के बाहर सार्वजनिक क्षेत्र तक बढ़ावत हवन स. यही बीच फेसबुक पेज पीमाएफओ पर 2024 के मंत्री के एगो पुराना पोस्ट सामने आल, जे पर वो स्पष्टीकरण देलन. आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहन के टिंटेड शीशा, विशेषकर चिकित्सा कारण से देवल जाए होला अनुमति खातिर नवा दिशा निर्देश लावता. एकर तहत आगे के विंड स्क्रीन और साइड विंडो से कम 75% रोशनी आए के चाही. मंत्री उस्मान माउमेद के अनुसार इस संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाण पत्र और दस्तावेज की जाँच हेतु एगो नवा वेरिफिकेशन प्रणाली तैयार करल जाता. और दूसरा देश के खबर में, डोनाल्ड ट्रंप ईरान समझौता के बीच अमरीकी सहयोगी ओमान के रास्ते में आए परी बम से उड़ाए के धमकी दे रहे बाटे. देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त. भल अपन ध्यान खातिर धन्यवाद. नमस्ते.
3: A good beat for your morning show. From a morning beat. RM2.
0: Radio.

0: क्या बात है क्या बात है. मॉर्निंग मॉर्निंग में ऐसे गाने कमाल के गाने हैं भाई.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: आई गेस मॉर्निंग में मजा तो आ रहा होगा. आप ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे गाने चल रहे हैं और फिर ट्रैफिक को किसको ध्यान है, वही गाड़ी चल रही है, बारिश हो रही है, म्यूजिक चल रहा है, एंजॉय करो, है ना. चलो जी, आपका वेलकम करते हैं दिस सेकंड आवर ऑफ मॉर्निंग बीट. मैं हूं विदिता आपके साथ हमेशा की तरह, आपको एंटरटेन करने के लिए एक से एक जबरदस्त गानों के साथ आए हैं. चलिए जी, यहां पर अब समय हो गया है बारिश के बारे में, तो सबको पता है बारिश हो रही है. बारिश कब तक चलेगी, दिन भर मौसम कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ ज्यादा बारिश होगी, जानने के लिए विद्या माँ से मिलते हैं.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: On est tous winners.
4: जोरदार एंटीसाइक्लोन स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण नम और अस्थिर हवाएं बह रही हैं. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह देश भर में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा. दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर वर्षा होगी. कभी कभी जोरदार वर्षा हो सकती है, खासकर ऊंचाइयों पर. कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा. अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24, तटवर्ती इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात के दौरान देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर जोरदार बारिश होगी. ऊंचे इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है. दोपहर बाद को लगूनों में समुद्र की स्थिति में सुधार आएगा. आज सुबह 6:30 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:57 पर सूरज ढल जाएगा.
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
5: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de Nature's Juice à 76,95 et le pack de 24 rouleaux de papier toilette Winners à 369,95. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
6: On est tous Winners.

0: l'aventure du sucre.
1: Découvre l'histoire du sucre avec Soso et Krusty. En ce moment, dans ton Tiki Fun Meal, un ticket enfant pour l'aventure du sucre t'est offert. Profites-en vite.
2: सिकम के लोन्स आर लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सब अपन सब प्रोजेक्ट के बिना कोनो चिंता के पूरा करें। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी का इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आशर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकम ग्रुप ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
4: RM2
5: रेडियो मस्ती।

बाहर बारिश हो रही है और आप हमारे साथ रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं आपके मॉर्निंग बीट पे और एक ऐसा गाना जो आपके स्ट्रेस को दूर कर दे. Yes, you're the one I'm talking to. Good morning.

0: ऐसे गाने चलते हैं तो मन करता है गाड़ी घुमाओ, घर चलो, हाथ में कप हो कॉफी का ये चाय की, बाहर मौसम एंजॉय करते हुए बस पैर पे पैर धरे बैठकर गाने सुनते जाए और मूड बनाते जाए।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, पाप लगेगा मुझको, ऐसा मत कराओ मुझसे। सुबह के 8:17 हुए हैं और आज है 18 अगस्त। सो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू हैविंग अ गुड टाइम। जी बिल्कुल, जब बारिश का ऐसा मौसम चलता है ना, और सच में जब थोड़ी ठंड लगने लगती है ना, तो घर में बैठे कंबल के साथ लिपटे हुए बाहर देखने का ये मौसम बड़ा मजा आता है। बाय द वे, सभी बच्चे और टीचर्स तो स्कूल चले गए होंगे या तो फिर रोड पे है, वे ड्राइव कर रहे होंगे, सब ठीक तो है, सब बढ़िया तो है, मूड तो ठीक है, कुछ याद तो नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं विदिता बस करो, कितना आप हमारी टांग खींचोगे? नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। चलो भाई, इनका भी एक टाइम होना चाहिए और हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट हमारा प्यारा सा गाना होने वाला है आपको मूड बनाने के लिए। चलो तो इसी के साथ भाई, मौसम जो है ये तो बदलता रहता है, लेकिन हम आपके मूड को भी बदल देंगे। अगर आपको थोड़ा ग्रूमी फील हो रहा है, थोड़ा सा आप पकड़म भी फील कर रहे हो कि मूड थोड़ा चिड़चिड़ापन है, तो उस चिड़चिड़ेपन को हम दूर भगाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान के हाथ में होता है अपने मूड को बदलना। कोई क्या करता है, जब दिल टूट जाता है तो दिल तोड़ने वाले गाने सुनता है और फिर उसके बाद अपने मूड को और भी ख़राब कर लेता है। मैं तो कहती हूँ जब दिल टूट जाए ना, तो वो गाना है ना, क्या कहते हैं, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ऐसे ऐसे गाने सुनो, सच कहती हूँ बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। और बाकी जो लोग थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ट्रस्ट मी आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल, बहुत खास होगा। आई प्रे, अपने दिल से प्रे करती हूँ, आज आप जो भी मांगोगे ना मिल जाएगा।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो,

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बरसाती मौसम है. मेक श्योर यू आर ड्राइविंग केयरफुली. नज़र ज़रा संभाल के गाड़ी पे जो ब्रेक होता है ना, उस पे पैर रखना. ज़्यादा एक्सेलरेशन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है. आई होप कि हमारे गाने जो हैं वो आपका मूड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. वैसे आपने नोटिस किया है कि बारिश सिर्फ वेदर चेंज नहीं करता, मूड भी चेंज कर देती है, है ना. और यहाँ पर हम आपके साथ हैं. मैं हूँ विदिता और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग बीट. नॉर्मली जो मॉर्निंग रश अनोइंग लगता है बारिश में, वही रोड्स, वो क्लाउड्स और वो कूल ब्रीथ

0: थोड़ा सिनेमैटिक फील देने लगता है। नहीं तो कभी खुशी कभी हम हो गया, नहीं रहने दो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बारिश आई बिलीव ब्यूटीफुल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है। क्यों भाई, जब बारिश नहीं होती है तब आप रोते हो, जब बारिश होती है तो वो ख़राब क्यों नहीं लगने लगता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। जिस तरह से आप धूप एंजॉय करते हैं, बारिश को भी एंजॉय कीजिए। जिस तरह से आप समर में कहते हैं इतनी कड़ी धूप है हमें सर्दी चाहिए, जब सर्दी आने लगती है तो बारिश होती है, बारिश होती कहते बारिश क्यों हो रही है। तो इंसान जो है ना कभी खुश नहीं होता कुछ भी कर लो इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता। हर चीज़ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो ढूंढ ही लेता है कंप्लेन करने के लिए। ऐसा मत करो। चलो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। इट्स टाइम फॉर सम मस्ती राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती वेदिता के साथ।
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो। मॉर्निंग बीट आरएम2 रेडियो।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: कि मैं हूँ यहाँ और दिल चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है आपका दिल? अरे दिल लगाना ज़रूरी है, मन लगाना ज़रूरी है, काम पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो। बस यही कहना चाहूँगी। यहाँ पर एक मैसेज आया, कहते हैं गुड मॉर्निंग विदिता जी, आपने कहा कैसे जैसे आपने कहा कि गाड़ी घुमाए मैंने और हम घर चले गए। देखो ऐसा मत करो, मुझे पाप लगेगा सूरज जी, ऐसा मत क्या करो, मजाक कर रहा है। चलो ठीक है। सो गाइज वेलकम टू रेडियो मस्ती। एंड अभी जैसा आपको पता है कि बारिश हो रही है, प्लीज़ बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, ओके। ऐसे ऐसे समय में ही, ऐसे ही मौसम में ही काफ़ी सारे लोग जो हैं स्पीड बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि रोड स्लिपरी होता है। कभी कभी आप ब्रेक लगाते हो फिर भी जो टायर्स हैं आपके, मेक शो कि घर से जब आप निकल रहे हो अपनी गाड़ी को हमेशा चेक करो, पानी है, वाइपर सही है, टायर ठीक है और ब्रेक लग रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमेशा चेक करके बाहर निकला करो। जस्ट बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग और स्पीड लिमिट पर ध्यान दो, और गाड़ी अगर आपके सामने है तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो। जहां पे थोड़ा फॉगी है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन रखें और हमारे साथ गाते चलें। वाह क्या बात है। गुड मॉर्निंग माय लवली पीपल, डू सेंड मी अ मैसेज ऑन 549 1294।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एक चीज और क्लियरली समझ आती है, एवरीवन इज बिजी। इसलिए जो इंसान अपने बिजी लाइफ में आपके लिए वक्त निकालता है ना, वो सिर्फ टाइम नहीं देता, वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है। टाइम इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ केयर, क्योंकि जब किसी के पास सभी 24 हर किसी के पास होता है ना 24 आवर्स, है ना, लेकिन फिर भी वो

0: आपके लिए कुछ मिनट निकालता है, एक कॉल, एक मैसेज या एक सिंपल हाउ आर यू, इसका मतलब ये होता है कि यू मैटर टू देम। एज के साथ हम ये रियलाइज करते हैं कि वर्ड से ज़्यादा एक्शंस मैटर करता है। हर कोई बिजी है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं। सो वन समवन कंसिस्टेंटली मेक्स टाइम फॉर यू, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। उसे नोटिस करें, अप्रिशिएट करें, उसे वैल्यू करें। कभी कभी आई केयर अबाउट यू बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, किसी का तुम्हारे लिए टाइम निकालना ही काफ़ी होता है।
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
1: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
2: Milo, libère ta force.
1: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
2: Milo, libère ta force.
1: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.

0: good beat for your morning show. From RM2
1: Radio Musty.
2: You're listening to Radio Musty. जी हाँ, मॉर्निंग बीट विदिता के साथ. आई होप यू हैविंग अ गुड टाइम. चलिए जी, आज अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेट मी टेल यू आर शेयरिंग योर बर्थडे विद द वन एंड ओनली गुलजार साहब. जी हाँ, और इनकी शायरी क्या कहने. चलो जी, यहाँ पर अरुणा ईरानी का भी आज बर्थडे है, जिन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है, और चाहे वो हिंदी, मराठी, गुजराती हो. एंड दलेर पाजी का भी आज बर्थडे है, इनके गीतों में कितने हमने डांस किए हैं. रणवीर शौरी, इनको भी आपने देखा होगा फिल्मों में, और टेलीविजन एक्टर भी रह चुकी हैं. एंड प्रीति जंगयानी, जिन्होंने मोहब्बतें फिल्म के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. तो ये वो सारे एक्टर्स हैं.

इन्होंने हमारी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाई है एज एक्टर एज सिंगर। और चलिए इसी के साथ समय हो गया है, हम थोड़ी सी मस्ती और कर लें। तो जितने भी दिलेर पाजी के फैंस हैं, मैं जानती हूँ आप लोगों को उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली मेरा फेवरेट ये है। इस गाने पे मैं बहुत डांस करती हूँ, इस गाने पे मैं बहुत झूमती हूँ। आई होप कि थोड़ा सा चेंज ये गाना आपकी लाइफ में जरूर ले आएगा और साथ ही साथ आपके मूड में भी। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट ऑफ कोर्स हमारे इस प्रोग्राम में जो कि है मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती।

0: चलिए गाइस, टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू यू। आपसे मुलाकात करूंगी मैं अब कल मॉर्निंग में 7 बजे। आई प्रॉमिस यू, एंड खूबसूरत गीतों के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे हम। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार आपके लिए, और हमारे बाद मॉर्निंग मस्ती जारी रहेगी आपके लिए।
1: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2.
2: Radio Musti.
0: And yes, Sunil Mani आ गई है आपके साथ देने के लिए। Please be careful जब आप drive करें, ठीक है? ख्याल रखिएगा अपना। चलिए कविता जी, thank you so much साथ देने के लिए। हमारे गाने enjoy करिए आप।

0: समाचारों को लेकर विधिमा आ चुकी है। विधिमा आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सुमी, सभी को नमस्कार। पेश है संक्षिप्त समाचार। डर्बन में आयोजित 46वें सदस्य शिखर सम्मेलन में सदस्य देश

0: उनके नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा करने और एक मजबूत सड़क के निर्माण के लिए एकत्र हुए, जिसमें प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी शामिल हुए। समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, ये शब्द पिछले गुरुवार से चर्चा में है, जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने पोइंदेसनी समुद्र तट का दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुँच का जायजा लिया। आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों, विशेषकर चिकित्सा कारणों से दी जाने वाली अनुमति के लिए नए दिशा निर्देश ला रहा है। इसके तहत आगे की विंड स्क्रीन और साइड विंडोज से कम 75% रोशनी आनी चाहिए। मंत्री उस्मान माउमेद के अनुसार इस संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जाँच हेतु एक नई वेरिफिकेशन प्रणाली तैयार की जा रही है। अगले महीने 10 और 11 सितंबर को मॉरिशस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक दाहिन तांग की मेजबानी करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य मॉरिशस और विपो के बीच सहयोग को मजबूत करना है, साथ ही ये बौद्धिक संपदा और नवाचार को बढ़ावा देने से जुड़े कई मामलों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। विदेश मामलों के जूनियर मिनिस्टर अजय नरसिंघन के अनुसार चर्चा मुख्य रूप से पैरेलल इम्पोर्ट लाइसेंसेस और पेटेंट पर केंद्रित होगी। और विदेश में फिलीपींस के दक्षिणी क्षेत्र के एक कैथोलिक जूनियर हाई स्कूल के एक छात्र की उसके ही सहपाठी ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय अधिकारी ने बताया कि बाद में आरोपी छात्र ने भी आत्महत्या कर ली। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आपके बिना दिल नहीं लगता इसलिए वापस आ गई जुड़ने के लिए. गुड मॉर्निंग, इट्स नर्मनी और अभी आप सुन रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती एंड चल रहा है यू मस्ती मॉर्निंग शो, जहां पर हॉरोस्कोप के साथ साथ होंगे आपके लिए टिप्स और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स. अभी के लिए लेट्स डाइव राइट बैक इनटू द गुड म्यूजिक.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: 9:18 हुए हैं और बी टाउन की खबरें के मुताबिक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दो है, मैंने सही पढ़ा क्या? ओके, बॉलीवुड गैंग एक रीयूनियन की खुशखबरी है। सच में जोया अख्तर ने कंफर्म किया है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आप बताओ, ऋतिक, फरहान और अभय को फिर से एक रोड ट्रिप पे देखना है कि नहीं? तो अब हमें बताइएगा कि आपके हिसाब से सीक्वल में सबसे ज्यादा मस्ती कौन करेगा। 5491294 पर डू लेट अस नो। एंड अगर आपके कोई मैसेजेस है या डेडिकेशंस है, डू नॉट हेजिटेट। अभी के लिए इन द मीन टाइम म्यूजिक को एंजॉय करते हैं साथ में आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर। वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: वैसे ख्वाबों में और रियलिटी में फर्क तो जरूर है, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि ख्वाबों को सच बनाना है तो भी आप सही हो। अभी बाकी दिन कैसा रहेगा ओवरव्यू जानने के लिए हॉरोस्कोप चेक करते हैं। शुरुआत करते हैं वेदर।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज एनर्जी फुल पावर में है। जो प्लान रुक गया था उसको दोबारा ट्राई करो। नेवर गिव अप आज का मोटो है। लकी नंबर है 8 और कल आपका है रेड।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। आज पेशेंस रखो, रिजल्ट्स जरूर मिलेगा। लकी नंबर आपके है 4 और कलर है ग्रीन।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: एक नया आइडिया आज आपके मूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकता है, बस एक्शन लीजिए। लकी नंबर आपके है 3 और कलर आपके है येलो।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: दिल कह रहा है गिव अप लेकिन सितारे कह रहे हैं थोड़ा और ट्राई करो। लकी नंबर आज आपका है 6 और कलर है सिल्वर।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज कॉन्फिडेंस ही आपका सुपर पावर है। किसी को प्रूव नहीं करना, खुद पर बिलीव करना है। लकी नंबर है 1 और कलर है गोल्डन।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: सही यानी कि परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, जो अवेलेबल है उसी से स्टार्ट करो। लकी नंबर आपका है 7 और कलर है ब्लू।
2: लीब्रा तुला राशि,
1: एक छोटी सी सेटबैक को फुल स्टॉप मत बनाओ, ये सिर्फ कॉमा है। लकी नंबर आपका है 2 और कलर है।

0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो चाहा है उसके लिए एक और स्टेप लीजिए। लकी नंबर आपका है 9 और कलर है ब्लैक।
0: सजिटेरियस धनु राशि,
1: एडवेंचर और ऑप्टिमिज्म दोनों हाई है। आज पॉसिबल को यानी कि इम्पॉसिबल को चैलेंज करने का दिन है। लकी नंबर आपका है 5 और कलर है ऑरेंज।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: मेहनत का रिजल्ट्स लेट हो सकता है लेकिन वेस्ट कभी नहीं जाता है। कीप गोइंग। लकी नंबर आपका है 11 और कलर है आपका ब्राउन।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: कुछ नया ट्राई करो, शायद वही आंसर है जिसका आप वेट कर रहे थे। लकी नंबर आपका है 10 और कलर है पर्पल।
0: पाइसेस मीन राशि,
1: खुद पर डाउट कम, ड्रीम्स पर ज्यादा विश्वास। आज का मंत्र है मैं रुकूंगा नहीं। लकी नंबर आपका है 12 और कलर है आपका व्हाइट। और ट्यूसडे रिमाइंड आप सभी के लिए, हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, बस हार के बाद दोबारा खड़े होना जरूरी है। नेवर गिव अप।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती

0: बिग थैंक यू टू ऑल द यूजर जो साथ दे रहे हैं और हम जो रेडियो मस्ती पर रहे हैं। शांतनु बेनागर से वी हैव गीता जी, सीता भोलू राम जी, शांतनु मुखर्जी, तुलसी ओकलू जी भी कनेक्टेड है कॉम मुंबई फॉर एस आई से। एंड बिग हेलो टू अब्दुल जी एंड सारा बानू जी जो मांग रहे हैं नेक्स्ट गाना। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ रहे क्योंकि इस आओ में और नेक्स्ट आओ में भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं। अभी के लिए ये नेक्स्ट गाना करते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: यहाँ पर दिल नहीं बल्कि मैसेजेस बोल रहे हैं.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Good morning. सुबह के 10 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे विधिमान नमस्कार.
6: नमस्कार नीलमणि. सभी सुनने वालों को नमस्कार. अगले महीने 10 और 11 सितंबर को मॉरिशस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक दाहिन तांग की मेज़बानी करेगा. इस यात्रा का उद्देश्य मॉरिशस और विपो के बीच सहयोग को मजबूत करना है. विदेश मामलों के जूनियर मिनिस्टर अजय नरसिंघन के अनुसार चर्चा मुख्य रूप से पैरेलल इम्पोर्ट लाइसेंसेस और पेटेंट पर केंद्रित होगी. समुद्र तट से सटी सरकारी भूमि, ये शब्द पिछले गुरुवार से चर्चा में है जब भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने पॉइंट डिस्नी समुद्र तट का दौरा कर सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच का जायजा लिया. आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों विशेषकर चिकित्सा कारणों से दी जाने वाली अनुमति के लिए नए दिशा निर्देश ला रहा है. इसके तहत आगे की विंड स्क्रीन और साइड विंडो से कम 75% रोशनी आनी चाहिए. मंत्री उस्मान मोहम्मद के अनुसार इस संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जाँच हेतु एक नई वेरिफिकेशन प्रणाली तैयार की जा रही है. और विदेश में जिम्बाब्वे में पुलिस ने 6 दिन पहले कारिबा झील में एक नौका के पलटने के बाद 8

0: और शव बरामद किए हैं, जिससे मरने वालों की संख्या कम से कम 92 हो गई है। शेष पीड़ितों की तलाश के लिए खोज अभियान अभी भी जारी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। बसंत राय रोड लागोजा में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री अशोक कुमार सिपुल, जो संजय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ललिता सिपुल के घर बसंत राय रोड लागोजा से उठाकर प्लेन मानियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:60 हुए हैं और सेकेंड आवर में हमने मार लिया है एंट्री. एंड आज का पहला टिप है कि अपनी लाइफ का लीड कैरेक्टर बनो. कंपैरिजन के सीन आप डिलीट कर दो. किसी और की स्टोरी देख के अपनी पिक्चर को बोरिंग बिल्कुल ही ना समझिए. आपके फिल्म का हीरो हीरोइन आप खुद हो. ऊपर से आज हम मना रहे हैं डोंट गिव अप डे. तो आज का दिन इज टू कीप गोइंग. चाहे सिचुएशंस कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, यू गॉट दिस मेरे दोस्त. नमनी यहीं पर है गानों के जरिए बूस्ट अप देने के लिए. सो स्टे ट्यून्ड.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीती।
2: Chan live in Mauritius.
3: Chan se paari.
2: Saturday 5th of September at SVICC Pai. Join us for the biggest Chan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
0: RM2
4: Radio Mustang.

0: Fashion Tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: फैशनिस्टाज आज का रूल एज यूजुअल की तरह सिंपल ही रखते हैं, जिसमें कंफर्ट भी हो स्टाइल भी। और अगर आपका आउटफिट आज का सिंपल है तो एक्सेसरीज को थोड़ा हीरोइन वाला एंट्री सीन दो। इयररिंग्स, कूल चश्मे या फिर एक स्टाइलिश वॉच, बस एक पीस जो कि करता है होल लुक को पिक्चर परफेक्ट। और याद रखो, ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है, अपना वाइब फॉलो करना वो ज्यादा जरूरी होता है।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: ओके अभी के लिए वेदर चेक. मॉरिशस में आज वेदर भी थोड़ा बॉलीवुड ड्रामा कर रहा है. एक स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोन के इन्फ्लुएंस की वजह से हवा भी है, बादल भी है और कभी कभी रेन का सरप्राइज. एंड स्पेशली एक्सपोज्ड एरियाज में यानी कि ईस्ट, साउथ और सेंट्रल प्लेटो में हवा 50 किलोमीटर पर आवर्स तक जा सकती है. सो अगर आज आपका हेयर स्टाइल मैंने प्यार किया से धूम बन जाए, ब्लेम द विंड. जाहिर रखते हैं वाइब को हैप्पी वाले मूड में विद दिस नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आपके लिए ना लाइफस्टाइल टिप बॉलीवुड स्टाइल में लेकर आ रहे हैं। गुस्सा आए तो कट, हाँ जी आर्ग्यूमेंट्स तो स्टार्ट होने वाला है। बॉलीवुड डायरेक्टर की तरह बोलो कट, या फिर पहले जवाब देने से पहले लंबी सांसें लीजिए। हर सीन में अननेसेसरी ड्रामा जरूरी नहीं होता है, कभी कभी बस लंबी सांसें और इग्नोर करने में ही भलाई होती है। फॉलो कीजिए नमनी को फॉर मोर टिप्स, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ 12 बजे तक आपकी मस्ती मॉर्निंग शो में, किस रेडियो पर? RM2 रेडियो मस्ती पर।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सब अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाए खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी खा। इसे हमनी के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमनी की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइ। इमे नियम आशर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
4: Jumbo, qualité déco, fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds par 100 roupies. Des pieds par 4 pieds portiers, 295 roupies. Granit, 8 pieds par des pieds, 2000 roupies. La voie portier, 3500 roupies. SPC flooring, lordoise, luminaire, sanitaire, robinetterie. Et plaisir, les autres produits à bas de prix incroyable, mais vrai. Promotion là, 10 pour des semaines seulement. Pour plus de renseignements, check nos pages Facebook, qualité déco.
0: RM2
1: Radio Musty.
5: I was singing about the times we had. Some were good, but most of them were bad. You said you loved me so much. You felt so good with my slightest touch.

वैसे ऐसे ही हसीने लोग साथ दे रहे हैं आरएमजू वीडियो मस्ती पर और मैसेज पर रिक्वेस्ट आया है कि वो अपने हस्बैंड के लिए हस्बैंड विनय के लिए बेटे रिदेश के लिए बेटी तानिया और सारे सीतामणि फैमिली जो वाको के रहने वाले हैं उनके लिए एक ब्यूटीफुल गाना चलाना चाहते हैं तो हो जाए नेक्स्ट गाना आपके नाम

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: दिन के 11 बज रहे हैं. जी सुंदर संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे विधिमान नमस्कार.
4: नमस्कार नीलमणि सभी को नमस्कार. आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों के टिंटेड शीशों खासकर चिकित्सीय कारणों से दी जाने वाली अनुमति के आवेदनों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू करने की तैयारी कर रहा है. वाहन की सामने की विंड स्क्रीन और आगे की साइड विंडो से कम 75% रोशनी अंदर आनी चाहिए. हालांकि 5% की अतिरिक्त छूट की अनुमति होगी. नए दिशा निर्देशों में ये भी स्पष्ट किया जाएगा कि किन बीमारियों के मामलों में अनुमति दी जा सकेगी. लगभग एक हफ्ते बाद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत कल सोमवार 17 अगस्त को 2 और पुलिस अधिकारियों से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई. ये है सेवानिवृत्त पुलिस सर्जेंट लुइकली फोमोइज मिकाएल अंशोंद्रा और सर्जेंट विद्युत जीवन. माना जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ी रकम हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया जिसे रिश्वत या अनुचित लाभ माना जा सकता है. अगले महीने 10 और 11 सितंबर को मॉरिशस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक दाहंतांग की मेजबानी करेगा. इस यात्रा का उद्देश्य मॉरिशस और विपो के बीच सहयोग को मजबूत करना है. विदेश मामलों के जूनियर मिनिस्टर राजे नरसिंगन के अनुसार चर्चा मुख्य रूप से पैरेलल इंपोर्ट लाइसेंसेस और पेटेंट पर केंद्रित होगी. और विदेश में रूस पर हुए यूक्रेनी हमलों में एक बच्चे सहित 9 लोगों की मौत हो गई है और 23 अन्य घायल हो गए हैं. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये हमले उस रात के ठीक बाद हुए हैं जिससे रूस ने इस साल यूक्रेन द्वारा किया गया सबसे बड़े पैमाने का हमला बताया था जिसमें कम से कम 7 लोग मारे गए थे. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. थोड़ी देर में एक शोक समाचार. ओंगियता कोमापू लेन नंबर 2 वाकुआ में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रीतम लीलोधारी जो प्रीतम नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर ओंगियता कोमा

0: मापुलिन नंबर दो वाकवा से उठाकर थ्वा मामेल की शमशान भूमि दी जाए जाएगी क्रिमिशन टुडे एट हाफ पोस्ट नून। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे हवाएं गाना से याद आया कि हवाएं 50 किलोमीटर पर आवर्स तक जा सकती हैं एंटी साइक्लोन की वजह से. तो अगर आप अभी निकले हो काम के लिए या फिर ब्रेक में हो, जा रहे हो लंच करने, स्टे सेफ. छतरी भी साथ लेते जाइए. स्टे एक्स्ट्रा केयरफुल लुक क्योंकि आप हमारे लिए स्पेशल हो. इट्स योर आरएमजू रेडियो मस्ती और मस्ती मॉर्निंग का तीसरा आवर शुरू हो चुका है विद एलमनी. तो इस आखिरी आवर में भी यू स्टे कनेक्टेड क्योंकि टिप्स गानों के बीचों बीच में लाते रहेंगे फॉर यू.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। Chan live in Mauritius. Saturday 5th of September at SVICC Pai. Join us for the biggest Chan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:18 हुए हैं. नेक्स्ट टिप का नाम है थोड़ा वॉकिंग थोड़ा टॉकिंग. डेली ना आपको थोड़ा वॉकिंग ऐड करनी है लाइफ में. क्यों? क्योंकि वॉकिंग कार्डियो का वो हेल्दी एक्सरसाइज होता है जो हमें लिटिल अमाउंट में ही सही लेकिन हेल्दी तो रखता है. तो आज काम के बाद किसी फ्रेंड को कॉल करो और वॉक एंड टॉक करो. एक्सरसाइज भी हो जाएगी इसी बहाने और गॉसिप भी, डबल धमाका. एंड अगर दोस्त अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर ही थोड़ा चल फिर लो. खुद से बातें करना भी हेल्दी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है. तो वही करते हैं RM2 रेडियो मस्ती. यही पर है साथ देने के लिए. अभी साथ निभाते चलो निर्मनी का अपने ही मस्ती मॉर्निंग शो में.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: आपको पता है दोस्त, आज नेवर गिव अप डे के साथ साथ हम मना रहे हैं सेरेंडिपिटी डे। मतलब वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो हम प्लान नहीं करते हैं, बट समहाउ लाइफ खुद हमारे सामने ले आती है। कभी किसी रैंडम इंसान से मुलाकात, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, या फिर एक ऐसा गाना जो बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट पे बज जाए, बस वही तो है सेरेंडिपिटी। तो आज थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा, नई एक्सपीरियंस को चांस दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज का कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आपकी फेवरेट मेमोरी ना बन जाए।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जाने से पहले एक छोटा सा lifestyle reminder. हर दिन productive होना जरूरी नहीं है यार. कभी-कभी slow down करना भी self care होता है. तो पानी पीजिए, थोड़ा fresh air लीजिए, phone side में रखिए और अपने लिए कुछ minutes जरूर निकालिए आज. और याद रखिए, आपको हर चीज एक ही दिन में figure out करने की जरूरत नहीं है. One step at a time, जैसे कि वो बोलते हैं, one day at a time. चलिए अब मूड को हल्का सा म्यूजिकल बनाते हैं हमारे सिंगर अभिजीत की आवाज में. वैसे याद है आपको ही गेम टू मॉरिशस और क्या परफॉर्मेंस था ना यार. तो रिवाइव करते हैं इस बार गानों के जरिए खास आपके नाम आर एम टू रेडियो मस्ती पर.
0: वेलकम टू आर एम टू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

और ऐसे ही 3 घंटे मस्ती मॉर्निंग का सफर अब अपने एंड की तरफ आ गया है। आई होप आपने एंजॉय किया, सॉन्ग्स के साथ वाइब किया, थोड़ा हंसा, थोड़ा गाया और अपनी मॉर्निंग को बनाया थोड़ा और मस्त। मैं नमनी मिलूंगी फिर से कल एक नए दिन, नए गाने और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक यू स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड कीप वाइबिंग विद योर आरएमजी रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के ठीक 12 बजे हैं. सुधीर संक्षिप्त समाचार आपसे विधिमा, नमस्कार आपको.
6: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को नमस्कार. सादिक के सदस्य देशों की साझा चुनौतियां कल डर्बन में चर्चा के केंद्र में रही. दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय के 46वें शिखर सम्मेलन के लिए 16 राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष वहां एकत्र हुए. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी इस सम्मेलन में मौजूद थे. उनके साथ विदेश मंत्री रितेश रामफल भी शामिल हुए. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जो इस वर्ष संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने अपने उद्घाटन भाषण में इलाकाई एकीकरण को प्रमुख प्राथमिकता बताया. बंद कमरे में हुई बैठक देर शाम तक चली, जिसके बाद सिरिल रामाफोसा ने समापन भाषण दिया. एएफपी के अनुसार दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अपने समकक्षों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जटिल चुनौती माने जाने वाले इमिग्रेशन के मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर मिला. सादिक के कई सदस्य देश जैसे जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य इस मुद्दे से सीधे प्रभावित हैं. इन देशों के नागरिकों को दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा और बड़ी संख्या में उन्हें वापस उनके देशों में भेजा गया. ये शिखर सम्मेलन मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए अन्य नेताओं से मुलाकात करने और साझा हितों के मुद्दों तथा क्षेत्र के रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करने का भी अवसर रहा. ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सरकार ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को याद दिलाया है कि इसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं. आईसीटी मंत्रालय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की पहचान वेरिफिकेशन को लेकर परामर्श की तैयारी कर रहा है. सरकार ने साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ये कानून साइबर उत्पीड़न के साथ साथ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी प्रोफाइल के इस्तेमाल पर भी सजा का प्रावधान करता है. किसी जांच प्राधिकरण द्वारा आपत्तिजनक सामग्री की सूचना दिए जाने पर पेज के प्रशासक के लिए उस सामग्री को मॉडरेट करना भी अनिवार्य है. उल्लंघन के मामले में 10,00,000 मॉरिशस रुपये तक का जुर्माना और 20 साल तक की सजा हो सकती है. आंतरिक परिवहन मंत्रालय वाहनों की टिंटेड शीशों, खासकर चिकित्सीय कारणों से दी जाने वाली अनुमति के आवेदनों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश लागू करने की तैयारी कर रहा है. वाहन की सामने की विंड स्क्रीन और आगे की साइड विंडो से कम 75% रोशनी अंदर आनी चाहिए. हालांकि 5% की अतिरिक्त छूट की अनुमति होगी.

0: और विदेश में यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज के इंजन रूम को एक अज्ञात प्रक्षेप्य की चपेट में आने से नुकसान पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य हताहत हुआ। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: You're listening to RM2 Radio Masti Retro Rhythm
2: RM2 Radio Masti

0: रेट्रो रिदम।
1: सो जहां भी हैं आप, घर पर होंगे, काम पर होंगे, बाजार में होंगे, बस में होंगे, व्हाटएवर यू माइट बी, बस नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकारे, घड़ी मिलाते चलिए। दिन के 12:10 होने वाले हैं। बस आपका ये जो दिन एकदम बढ़िया हो, सुखमय हो, यही कामना करते हैं। आई एम हियर विद यू टिल 2 PM, 2 तक बस चंद एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ आपके मन को लुभाते रहेंगे। बाय द वे, आपके मैसेजेस तो आने शुरू हो गए हैं ऑन 9:09 मैसेजेस हो, व्हाट्सएप हो, अगर कोई भी करना चाहे देन मोस्ट वेलकम। सो बस अपने मैसेजेस पैगामों के जरिए किसी का मन खुश करना चाहते हैं, किसी का दिल जीतना चाहते हैं, तो हम हैं, ये गाने हैं आपके लिए।

0: रेट्रो रिदम।
1: देखो भाई, आई हूँ तो बोलूंगी ही, कहूंगी डेफिनेटली, लेकिन आप ही कुछ कह सकते हैं। 5499 1294 12:19 बिना टकाफी मैसेजेस है यहाँ पर। थैंक यू दिल से आपको, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तैयब साहब, गुड आफ्टरनून, लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू यू। मिस्टर सूरज, आज आप 66 ईयर्स के हो गए हैं, एंड बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं। 7 बहनें हैं आपकी, कमला, रीता, शकुन, बीना, शारदा, रेखा एंड ब्रिंदा। साथ में आपके 5 भाई, मुकेश, प्रदीप, राज, कवि एंड डूबा फैमिली। सुरेखा जी, कथो कुको से एंड रामधन परिवार के नाम कहती है, प्लीज ये गाना चला दो मेरे लिए, वाई नॉट, सभी गाना आपके लिए। तो यशवंत जातू हियर फ्रॉम कॉटेज, कैसे हैं आप, ठीक ठाक? आप मुकेश वाला गाना सुनना चाहते हैं, क्या खूब लगती हो, किसके नाम भाई, पूरे परिवार के लिए, जातू फैमिली फ्रॉम मोटालोंग, यशवंत जातू, साथ में निर्मला एंड टू एमबीसी टीम है, थैंक यू सो मच। अगला गाना गुजार टू यू टू, यहाँ पर है कौन, मैं देखती हूँ, एक मिनट, ओके। नमस्ते जी, मैं हूँ कविता मोचिदा से, आप अच्छी है ना? बिल्कुल अच्छी हूँ, अगर आप लोग ठीक ठाक तो नीतू भी एकदम फर्स्ट क्लास। गाने की फरमाइश आप कर रही है, चला देना फिल्म है पिया का घर, लता जी के गाए, उनकी आवाज में, चली मैं ढूंढती हूँ, और ये गाना आपको बहुत ही पसंद है, तो अगर आपकी पसंद है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। ऑलराइट, श्याम देवी चरण, थैंक यू सो मच माय डियर, पेगे बैसे हैं महान महादेव सिखदेव लाल जी एंड राजू, आपके लिए नेक्स्ट गाना चलाते हैं। नेफ्यू विष्णव, उनका बर्थडे है मिहान, बल्कि मिवान, कल उनका बर्थडे था, क्या बात है, सोच समझ कर हम आप लोग आए हैं। फूफो की तरफ से मौसी रेशमा, दीदी मिष्टी, हिमाक्षी, मौसा आशीष, तेरा मुझसे है पहले, ऑलराइट, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुकेश और कंचन की आवाजें फ्रॉम द मूवी धर्मात्मा।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: 12:25 मिनट टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन. कृष्णा जी आपको बेलवी मुगल से कहते हैं, एनर्जी कहाँ से लाते हैं, ये आपका प्यार आपका साथ है तभी तो हम आ पाते हैं, बस दिल साफ हो तो हर बाजी आप जीत सकती हैं, है ना. और ये है लता जी एंड रफी साहब की मधुर आवाजों में शोलाब शबनम फिल्म का सिरे बाहर गाना आपके नाम पूरे परिवार के लिए भी.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: पिया का घर फिल्म से लिया गया, लेकिन लता जी की आवाज में ये जीवन है। जीवन क्या है, बस आप अपनी कहानी को याद कीजिए, लेकिन उसको आप बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। 12:33 हुई है। ललित एंड जीतन फैमिली, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। यशना अश्चय, आप दोनों को हैप्पी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स आपकी मामा विमला, लेट पापा, भाई, सभी जगदयाल परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून आप आडू फैमिली।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: गाना इतना सूदिंग था, कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला भाई. ऐसे ही होते हैं बस दिल को छू लेने वाले नगमे, आपके दिल को तार, आपके दिल के तारों को छेड़ने के लिए. 12:37, थैंक यू सो मच. हे प्यारी सी रेखा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक बेटा है आंच पोंबोजो से. आप कहती हैं सभी फ्रेंड्स नौशीन, शालिनी, इंदिरा, कल्याणी अभी काम पर हैं, सो बोन कुहाज एंड यू मस्ट बी ड्यूरिंग लंच टाइम, सो बोन अपेची आप सभी को. लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू यू. यहाँ पर हैं हबी अजय, रामजतन, आपकी लवली वाइफ पिंकी, बेटी सानवी. रामजतन परिवार की तरफ से फ्रॉम फोंजुसाक आपको हार्दिक शुभकामनाएं. आपको भी हेलो. अब्दुल अंसारा बानू, साथ में है संगीता, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन श्रिया, आर्यन, नील.

होता है ब्लांश से और जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पेशली आपके लिए याशना और अक्षय वंस अगेन शादी की सालगिरह आपको बधाइयां आपको और ये जो वाला गाना है इन द वॉइस ऑफ कुमार सानू आहा प्यार की बारिश शुरू हो चुकी है इसमें आप दो साल पहले भीग चुके हैं तो बस ये जोड़ी सलामत रहे अभी भी सोच रहे कौन सा गाना है रुको भाई रुको

0: चुप चुप चुप चुप
1: आप ही गाओ ना।
2: मगर चुप के मगर चुप के
1: कितना चुप रह सकेंगे आप। प्यार किया तो डरना क्या, कभी ना कभी वो मोहब्बत जो है इजहारी मोहब्बत हो ही जाएगी, सबके सामने खुल्लम खुल्ला हो जाएगा। 549-9294 पर थैंक यू सो मच हमारे हम सफर

0: पर बनने के लिए ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स बी द गोल्डन एरा या फिर द 90s दिल को छू ही जाते हैं.
1: रेट्रो रिदम
2: RM2

आपका भी साथ मिल रहा है. थैंक यू सो मच लीना, प्यारी सी लीना. उनके पति हैं धर्मेंद्र और प्लेन मानियों से आपके पूरे परिवार के नाम. लता जी की आवाज में प्यासा सावन फिल्म का ये गाना आपको नजर करते हैं.

थैंक यू सो मच आपके लिए प्यारी सी ज्योति और आपके हबी है तनवीर, अभी वो ड्राइव कर रहे हैं एंड रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। बस उनको कहेंगे ड्राइव स्लोली, कल्ले कल्ले, हल्लू हल्लू, हाँ आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले, स्माइल एंड फोकस, कॉन्सेंट्रेट, और ये सब गाने आपके नाम।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: ऐसे ही प्यार से साथ निभाते रहिएगा, हम भी कोशिशें करते रहेंगे आपकी फरमाइशों को पूरी करते हुए। 12:48 मिस्टर बाबू अनितवा, अभी आप अपनी दुकान में हैं, अभी लंच करने वाले हैं, बोना पीछे शुभाहार। आज का पंची फिल्म से लिया गया सरबहार एवरग्रीन सॉन्ग सर आपको पसंद है, राजेंद्र कुमार, और आपने कहा था वैजयंती माला, हाँ हाँ ये गाना आपके नाम।

0: रेट्रो रिदम।
1: बस आप भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलिए और आपकी इस मंजिल में हम भी हम सफर बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। 12:51 आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि बॉलीवुड के मशहूर लिरिसिस्ट, गीतकार, फिल्म मेकर आप है कौन? वेल, आप है गुलजार साहब। जी हाँ, राखी जो एक्ट्रेस रही उनके पति, और आज उनका बर्थडे है। 18 अगस्त 1934 को उनका जन्म हुआ था। स्क्रीन राइटर है और इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने लिखे हैं। गजलें जब हम सुनते हैं उनकी, स्पेशली उनके लगभग सभी जो संगीतकार हैं उनके साथ काम किया और कई अवार्ड से सम्मानित हुए, और बस उनके गाने एक से एक बढ़कर हैं। और उनमें जो सरलता है, जो शब्दों की, जब लिरिक्स की बात कर रहे हैं तो धुन के साथ, कंपोजिशन के साथ दिल में घुल से जाते हैं। उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये गाना है लिस्ट में फ्रॉम द मूवी घर, डेफिनेटली उनके नाम उनके सभी फैंस की तरफ से।

देखते ही देखते वक्त कैसे बीत गया पता ना चला, और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे एक बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। साथ निभाते रहिएगा हाँ on 5499 1294।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2।
2: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ, साउथ,
4: 103.5,
3: ईस्ट, वेस्ट,
4: 96.4,
3: सेंटर,
4: 99.4।
1: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Ek baja hai.

0: एक बज चुका है सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता नमस्कार
1: नमस्कार नीतूषा श्रोताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है मॉरीशस सरकार एक कार्बन न्यूट्रल ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है प्रधानमंत्री ने कल डर्बन में आयोजित सादेक शिखर सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डेटा सेंटर की सेवाएं पूरे क्षेत्र के लिए उपलब्ध हो सकती हैं प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मॉरीशस की विभिन्न पहलों पर भी विस्तार से चर्चा की उनके अनुसार इन पहलों से अफ्रीका को काफ़ी लाभ मिल सकता है जैसे कि आपको बताया कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ छात्र कल स्कूल लौटे लेकिन इस बार उनके लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के छात्रों को अब स्कूल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी हालांकि नए नियमों के तहत छात्रों को मोबाइल फोन अपने साथ रखने की अनुमति है बशर्ते फोन बंद हो और सुरक्षित तरीके से रखा गया हो इन नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी इसमें स्कूल से अधिकतम 5 दिनों तक सस्पेंशन भी शामिल हो सकता है कक्षाओं में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ कौंसेई दे रिलिजियों यानी धार्मिक परिषद ने नागरिक शिक्षा के समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर एकता का आह्वान किया है परिषद ने कहा कि समाज को कमजोर करने वाली सामाजिक बुराइयों में हो रही बढ़ोतरी चिंता का विषय है परिषद ने इस बात पर भी जोर दिया कि युवाओं में जिम्मेदारी की भावना दूसरों के प्रति सम्मान और आलोचनात्मक सोच समेत कई महत्वपूर्ण मूल्यों को विकसित करने की उचित अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए कौंसेई दे रिलिजियों के अध्यक्ष पेया फिलिप गुपी इस बुलेटिन से ठीक पहले प्रसारित हुए कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे यानी कि कल रात के कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार जर्मनी ने नए कानून के तहत पहली बार उन तस्करों के खिलाफ छापेमारी की है जो इंग्लिश चैनल के रास्ते छोटी नावों से प्रवासियों को ब्रिटेन भेजने के लिए जर्मनी को एक पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करती हैं इस साल वसंत ऋतु में नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया क्षेत्र में ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9000 से अधिक लाइफ जैकेट दर्जनों छोटी नावें और उनके इंजन तथा 360 पंप जब्त किए इन छोटी नावों और अन्य उपकरणों को अब एक गुप्त स्थान पर रखा गया है ब्रिटेन की नेशनल क्राइम्स के अनुसार इन नावों के जरिए 2000 से अधिक प्रवासियों को अवैध रूप से इंग्लिश चैनल पार कराया जा सकता था पश्चिमी जर्मनी में सक्रिय तस्कर लंबे समय से गैराज या गोदामों में नावों और अन्य उपकरणों को छिपा कर रखते हैं और बाद में उन्हें उत्तरी फ्रांस पहुंचाती हैं इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला साथ रहे सुनते हैं शुभ समाचार शोक समाचार सुनिए रूथ कास्केट पाल्मा कैट्रोबोन में 72

0: साल की 72 ईयर ओल्ड की श्रीमती मीराबाई रागू, श्रीमती मीराबाई रागू पैदाश नाम कहानू और जिन्हें शांति के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री आनंद रागू के घर पाल्मा काट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM2 Radio Musti Retro Rhythm RM2

गली गली क्या बात है, गुनगुना रहे हैं भवरे और हम भी गुनगुना रहे हैं भाई। ऐसे गाने भुलाए से भी भूल नहीं सकते रफी साहब आशा भोसले, दैट वाज आराधना फॉर यू। घर मिलाते चलिए, 1:09 हो रही है। वेलकम बैक एंड प्यार भरे एवरग्रीन सॉन्ग्स का सिलसिला जारी रखते हैं, वो भी टिल 2 PM। दैट वाज फॉर यू ममा शारदा दीदी अनीता, खासतौर से आपके नाम सुया बिहारी एंड पूरे परिवार। चलिए रिक्वेस्ट तो बहुत सारी आई है, तो नेक्स्ट गाना आपके नाम।

ये है संजोग फिल्म से लिया गया दीपा दिशा देवेश रायना हेतल चिराग अदिति अलीशा एंजेला एंड स्वीटी फ्रॉम बकवा

0: वेरी गुड क्वेश्चन.
1: फिर प्यार न कैसे हो.
0: आंसर जो है, जवाब जो है, आप अपने दिल से पूछिए, शायद खुल्लम खुल्ला प्यार हो जाए. जया आपके नाम, ये अगला गाना माय डियर फ्रेंड आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में. खेल खेल में प्यार हो गया, लेकिन प्यार कोई खेल नहीं है. हाँ, प्यार को सीरियसली लीजिएगा. किसी से प्यार करते हो तो उस प्यार पर खरे उतरना भी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1:13 स्पेशली आपके लिए जयन फैमिली फ्रॉम कैथरबोन.
2: अरे देख रहे हैं
3: तो देखने दो,
2: जल भी रहे हैं.
3: अरे तो चलने दो,
2: खुली सड़क है बाबा.
3: तो क्या हुआ भाई,
2: हो जाए
3: हो जाए.

0: 1965 की मूवी जानवर जिसमें द लेट शम्मी कपूर और राजश्री नजर आए थे एंड ऑफ कोर्स शंकर जयकिशन का संगीत और ये जो गाना है ऑफ कोर्स अगर आप पुराने गाने पसंद करती हैं द बीटल्स आई वांट टू होल्ड योर हैंड इसी चून पर सेट किया गया गाना बस 5499 पर
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.
0: I remember last week इस गीत की फरमाइश आई थी देखो आज मौका भी है दस्तूर भी है द ग्रेट गुलजार साहब एक बार फिर घर फिल्म से लिया गया लेकिन दूसरा गाना लता जी और किशोरदा की आवाजों में आपकी आंखों में कुछ ऐसा क्या है भाई बस आपको ये गाना अच्छा लगता है तो why not रोशनी दिस वन आपके नाम पूरे परिवार के

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: कोई राज वाज नहीं है, बस दिल की आवाज है, दिल की पुकार है. 1:31. थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पर सीता गीता भोलू राम परिवार शतु बिना से हैं आप. गुजार टू बेटी अवनी, पति रोशन और खास आपके नाम मनीष मां, बल्कि मनीषा.

0: लिरिसिस्ट वो रहे और साउंडट्रैक तो इतने खूबसूरत रिनाउंड रहे और ब्रिलियंट जैसे कहते हैं. और कई जो गाने हैं जैसे ये गाना आपने सुना राग पीलू, ओ बेकरार दिल भीम पालसी जो राग है, झूम झूम ढलती रात कमोड कल्याण, ओ माय गॉड, हर गाने तो हर राग पर आधारित ही होता है लेकिन ऐसे गाने एवरग्रीन, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं गोल्ड इज गोल्ड.
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.
0: प्रकाशवती कैसे हैं माय डियर? बेल्जियम में हैं आप और आप कहते हैं जोरों की बारिश हो रही है, राहत पहुंची आपको गर्मी के इस मौसम में?

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: प्यार से तो आप ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच. पौने दो बज चुके हैं, टाइम इज फ्लाइंग, टाइम इज फ्लीटिंग. 5499 1294 पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड इस वक्त काम पर हैं एट फ्लाक का आप हो रेशमी. रेशमी अपने दोस्तों के साथ है, थैंक यू सो मच माय डियर. लवली सॉन्ग्स और लवली पीपल के नाम.

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: कैसी हैं आप? यस, आप हैं कौन? वेल, बंधु फैमिली, खास आपके नाम शमशाद बेगम फ्रॉम त्रियोली।

यस टाइम इज फ्लीटिंग, 1:55 एंड नेक्स्ट मीटिंग अब थर्सडे मॉर्निंग सुबह 5 बजे आपको जगाने आऊंगी इन राइज एंड शाइन. हैप्पी बर्थडे टू यू यश कुरिमान. और ये है बेटा रायान, बेटी रायना, सासू माँ है, साथ में तेजल, तनवीर, आयशा, कैथ्रो बोन से सब परिवार के नाम. चलते चलते एक और मैसेज यहाँ पर. हाय नीतू, वीना हूँ मैं, एक हॉट ब्रेकिंग सॉन्ग, अरे बाप रे बाप, दिल तोड़ने वाला गाना. अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली आपके नाम चलाऊंगी. और थोड़ी देर में परी भी आ जाएगी.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: 2 बजे हैं. एक बार फिर सुनते हैं देश विदेश की खबरें. आपसे आशिता नमस्कार. आपको
7: नमस्कार नीतू. शाश्वताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका के नए उच्चायुक्त अब अपने पद पर कार्यरत हो गई हैं. हेनरिच जोवानी एप्रिल ने आज 18 अगस्त राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए. ये मुलाकात शातुदगेजी में हुई. हेनरिच जोवानी एप्रिल ने डॉक्टर हिला मालानी नेली मंजिनी का स्थान लिया है. अब वह मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे. कक्षाओं में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ कॉन्सेई दे रिलिजियों ने नागरिक शिक्षा के समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर एकता का आह्वान किया है. परिषद ने कहा कि समाज को कमजोर करने वाली सामाजिक बुराइयों में हो रही बढ़ोतरी चिंता का विषय है. परिषद ने इस बात पर भी जोर दिया कि युवाओं में जिम्मेदारी की भावना, दूसरों के प्रति सम्मान और आलोचनात्मक सोच समेत कई महत्वपूर्ण मूल्यों को विकसित करने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए. नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ छात्र कल स्कूल लौटे, लेकिन इस बार उनके लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के छात्रों को अब स्कूल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि नए नियमों के तहत छात्रों को मोबाइल फोन अपने साथ रखने की अनुमति है, बशर्ते फोन बंद हो और सुरक्षित तरीके से रखा गया हो. इन नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी. इस समय स्कूल से ज्यादा 5 दिनों तक सस्पेंशन भी शामिल हो सकता है. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली जानकारियों के अनुसार जर्मनी के नए कानून के तहत पहली बार उन तस्करों के खिलाफ छापेमारी की है जो इंग्लिश चैनल के रास्ते छोटी नावों से प्रवासियों को ब्रिटेन भेजने के लिए जर्मनी को एक पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करती है. इस साल वसंत ऋतु में नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया क्षेत्र में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9,000 से अधिक लाइफ जैकेट, दर्जनों छोटी नावें और उनके इंजन तथा 360 पंप जब्त किए हैं. उधर रूस ने ब्रिटेन पर यूक्रेन संकट को जानबूझकर और बढ़ाने का रास्ता चुनने का आरोप लगाया है. ये आरोप उस पुष्टि के बाद आया है कि रूस के भीतर ठिकानों पर किए गए हमलों में ब्रिटेन में निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था. ब्रिटेन में रूसी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि ऐसा करके ब्रिटेन खूनी अपराधों और आतंकवादी हमलों में सहयोगी और सअपराधी की भूमिका निभा रहा है. दूतावास ने कहा कि लंदन के कदमों के निश्चित रूप से परिणाम होंगे जिनके लिए उससे जवाब देना पड़ेगा. साथ ही चेतावनी दी गई है कि संघर्ष में ब्रिटेन की भागीदारी जितनी गहरी होगी उसे उसकी उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. साथ रहे सुन पाएंगे एक शोक समाचार. बेंगाली स्ट्रीट लातूकिनिक पॉइंट सैबले में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री सिबरसाद सिंह मंगला जिन्हें अजीत के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, उनके अर्थी आज शाम 3 बजे मोगा पुजित रविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले वाली दीपात की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well friends, afternoon time, जहाँ पर हम होते हैं आपके म्यूजिकल हम सफर. वैसे तो मॉर्निंग से लेकर रात तक होते हैं आपके लिए गुड सॉन्ग्स, गुड म्यूजिक, बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती. अभी के लिए इट्स टाइम कि हम बी राउंड की कुछ खबरें आप तक पहुंचाएं विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स. सो मैं हूं परी आपके साथ. दिन के 4 बजे तक होंगी बी टाउन की अपडेट्स, बी टाउन की गॉसिप्स, बी टाउन की खबरें. क्या हो रहा है आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज की लाइफ में, कौन सी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है और कौन सी फिल्म जो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, सभी के बारे में बात होगी. दोस्तों आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, सो कीप एंजॉयिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. अभी के लिए कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स, नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू ऑल.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

सो वेल फ्रेंड्स, दैट्स योर रेडियो मस्ती. जैसे हम कहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ हो या फिर बॉलीवुड हो, रिश्ते जो हैं वो अक्सर बदलते रहते हैं, और ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता के साथ. सो इसी के बारे में कुछ खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे. फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल सोलफुल गाना, एक गाना ऐसा जो आपको एक अलग वर्ल्ड में लेकर जाता है, जहां पर आपके लिए बहुत सारा प्यार हमने छुपा के रखा है. सो यू आर कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज. Enjoy this one.

0: Cheese. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स, एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा एक दूसरे को लेकर बीते कई दिनों से सार्वजनिक टिप्पणियां कर रहे हैं और इसी बीच कश्मीरा शाह ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। गोविंदा के भतीजे कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने इस पोस्ट में सवाल उठाया है कि क्या सच्चा प्यार आज भी मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने शादियों के टूटने पर भी अपनी निराशा जताई है। कश्मीरा शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि क्या यही सच्चा प्यार होता है? क्या सच में ऐसा प्यार होता है? क्या कोई किसी से इतना प्यार करता है कि इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाए या फिर अपने साथी को खास महसूस कराए? इस तरह का प्यार कहाँ मिलता है और ये इंसान कौन होते हैं? शादियाँ टूटने और लोगों के धोखा देने से बहुत ज़्यादा वो निराश है और उन्हें लगता है कि अब रियलिटी का जो सामना है, अब उसकी उसको सामना करने की अब उनकी ज़रूरत है। और यहाँ पर उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की है जहाँ पर क्लाउड से आसमान में एक हार्ट बन रहा है और इसी के चलते उन्होंने ये सवाल उठाए हैं और लिखा है दैट फीलिंग सो दिस इल्यूजनल एंड मैरिजेज आर ब्रेकिंग। लोग एक दूसरे पर चीट कर रहे हैं और साथ ही अब एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। ये कहना है कश्मीरा शाह का। और ये तो हम जानते हैं कि कुछ टाइम पहले कश्मीरा शाह एंड गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं था, लेकिन हाल ही में दोनों ने अपने रिश्तों को ठीक कर लिया है एंड अब दोनों टॉकिंग टर्म्स पर है। और इसी के बीच जब गोविंदा और सुनीता के बीच टकराव की बातें सामने आ रही है, कश्मीरा का ये जो पोस्ट है वो काफ़ी सवाल खड़े करता है। तो क्या ये पोस्ट गोविंदा और उनकी वाइफ के लिए है? वी नेवर नो। लेकिन जो सवाल उन्होंने पूछे हैं वो तो आज के टाइम में एकदम रेलेवेंट है। हर कोई यही सोचता है कि प्यार के जो मायने हैं वो बदल गए हैं, प्यार का जो मतलब है वो बदल गया है एंड ओल्ड स्कूल वाला प्यार अब तो मुश्किल से मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपके लिए तो हम लेकर आए हैं ओल्ड स्कूल हो या फिर लेटेस्ट, सब कुछ आपके लिए, यानी कि बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, नए हो या फिर पुराने गाने, सब पूरा कॉम्बिनेशन आप तक हम पहुंचाते हैं। यह है आपका आरएम टू रेडियो मस्ती। आवाज पे मत जाइए, आप बस हमारे दिल की तरफ देखिए जहां पर आपके लिए प्यार ही प्यार है। आवाज थोड़ी सी नासाज है लेकिन कोशिश है कि आपका एंटरटेनमेंट हम करते रहें ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती। अभी के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं दोस्तों, सो नॉट टू फॉरगेट, इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294।
3: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूनिसेफ के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और समृद्ध करने के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार की गई है। इस परियोजना में स्थानीय हितधारकों, विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों को शामिल किया गया है। योजना के तहत एक इको पार्क बनाया जाएगा, जहां जैव विविधता के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सुविधाएं और गतिविधियां उपलब्ध होंगी। इसके अलावा एक इको म्यूजियम भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें द्वीप की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता को उजागर किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यूनिसेफ की प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखना, साथ ही पर्यटकों को एक ऐसा समृद्ध अनुभव प्रदान करना है जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सम्मानजनक हो। 26 वर्षीय एक युवती ने जीतू अस्पताल के लेबर वार्ड के कर्मचारियों पर कथित चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया है। युवती का दावा है कि प्रसव के दौरान एक दाई ने उसके बच्चे के सिर को पीछे ढकेला था। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हमारे सूत्र इन आरोपों को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार प्रसव के दौरान किए गए कुछ चिकित्सकीय कदम सामान्य प्रसव प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। इस मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम हमारे अगले बुलेटिनों में ज्यादा विस्तार से आएंगे, जहां पर डॉक्टर नवजात शिशु की सेहत को लेकर खतरों के बारे में भी बताएंगे। मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका के नए उच्चायुक्त अब अपने पद पर कार्यरत हो गए हैं। हेनरिच जवानी अप्रैल ने आज 18 अगस्त को राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। ये मुलाकात शातो द्रेजी में हुई। हेनरिच जोवानी अप्रैल ने डॉक्टर क्लामालानी नेली मंजिनी का स्थान लिया है। अब वह मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए निशाना बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के तरीके को लेकर मेटा को अदालतों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मंगलवार से शुरू होने वाला एक नया जूरी ट्रायल कंपनी के कारोबार के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये मुकदमा 2023 में 30 अमरीकी राज्यों, जिनमें कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क भी शामिल हैं, द्वारा दायर किए गए एक मामले से जुड़ा है। इन राज्यों का आरोप है कि मेटा ने बच्चों की निजता से जुड़े कई संघीय और राज्य कानूनों का उल्लंघन किया है। राज्य सरकारें मेटा से $1 trillion से अधिक की राशि मांग रही हैं। इसके साथ ही वे फेसबुक और इंस्टाग्राम में कई बदलाव की मांग कर रही हैं, जिनमें लाइक की संख्या दिखाना बंद करना और अनंत स्क्रॉल की सुविधा खत्म करना भी शामिल है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies.
0: Radio Musti.
1: Radio Musti.

सो वेल फ्रेंड्स वार्म वेलकम आप सभी का 3:08 हो गए हैं लेकर आए हैं आपके लिए बी टाउन की खबरें दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज एंड कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ वंडरफुल टाइम यह है आपका अपना आरएम2 रेडियो मस्ती

0: listening to
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: सवाल खूबसूरत गाने आप एंजॉय कर रहे हैं और यहां पर हम भी तो आपके साथ कनेक्टेड हैं हमारे दोस्त जो हमेशा हमारा साथ देते हैं रोशनी दीवानियत गाना सुनकर हो गई हैं हैप्पी हैप्पी लाइक आई से दैट एवरीवन हैज अ फेवरेट सॉन्ग कभी-कभार कुछ गानों को सुनकर लगता है कि ओ माय गॉड ये गाना बिल्कुल मेरे लिए ही बना है या फिर हमारी जो कहानी है वो इस गाने में कैसे बयां होती है सो जैसे हम कहते हैं दैट एवरी स्टोरी हैज अ साउंडट्रैक और वो साउंडट्रैक हम आप तक पहुंचाते हैं इन खूबसूरत गानों के साथ सो वेल रोशनी हमारा साथ दे रही हैं दिस वन goes out for you and loads of love to you Abdul and Saira Banu abhi hamara saath de rahe hain so well gana aapke naam and wishing you a lovely time wonderful moments hamare is pyare se radio station ke saath and all the way from Lal Mati aaye hain aap Davisen apna pyar lekar so well thank you and warm welcome aapka aapke liye bhi hum chala rahe hain kuch pyare gaane goes out for you goes out for all your loved ones ladies and gentlemen saath de rahe hain aap on RM2 Radio Masti aapke messages aapke dedications 5499 1294 par

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. The musti.
1: Bombay Talkies. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: और चलिए दोस्तों, इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। जाते जाते आपके कुछ मैसेजेस, कुछ डेडिकेशंस। यहाँ पर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून जी, मिस्टर टोनी हमारा साथ दे रहे हैं। सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू एंड गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। होप यू हैविंग अ गुडी गुड आफ्टरनून। एंड यहाँ पर श्याम देवीचरण साथ दे रहे हैं अपनी गर्मा गर्म इलायची चाय और दोस्तों का साथ, परफेक्ट आफ्टरनून। फ्रेंड्स सुखदेव, लालदेव और साथ में है लाला, राजू और सभी देवीचरण परिवार ऑफ पेब है। सभी के नाम एक स्वीट सा डेडिकेशन। और ललिता जी आप भी साथ रही है, कहती है घर आ रही हूँ वापस इन बस एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग्स। डेडिकेटिंग गाना फॉर कलीग्स सोनी, पिंकी, लैला, दिशी, रूपा, शीली, रुक्साना और सभी जीतन परिवार के नाम। सभी के लिए आपने भेजा है प्यार एंड स्पेशल विशेस। और चलिए यहाँ पर अपारू परिवार, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, एंजॉइंग द शो, एंजॉइंग द टाइम, एंजॉइंग योर आफ्टरनून। सो दारें, श्वेता, रविश, प्रीशा, लव शाइन, अपारू परिवार ऑफ वैष्णवा। अगला गाना इसे हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम एंड वेल फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। आ रही है हंसनी लेकर कुछ और प्यारे गाने आपके लिए इन योर रफ्तार वाइब्स। उनका साथ निभाइए और स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।

0: टाइम चेक शाम के ठीक 4 बजे है। अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपके साथ अशीता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीष माँ, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये मामला मार्च 2024 समय हुई एक पुलिस छापेमारी से जुड़ा है और अब इसकी जांच में 6 मौजूदा या पूर्व पुलिस कर्मी शामिल हैं। उस समय ये सभी SSU की स्पेशल इंटेलिजेंस सेल के सदस्य थे। ये इकाई पूर्व पुलिस आयुक्त अनिल कुमार दीप के कार्यालय में बनाई गई थी और सीधे उनके अधीन काम करती थी। 30 मार्च 2024 को इस इकाई के सदस्य वालिदिपत के एक निवासी के घर तलाशी लेने पहुंचे थे। वहां बड़ी मात्रा में नकद राशि बरामद हुई। अब FCC की जांच का मुख्य केंद्र यही है कि रकम मिलने के बाद उसके साथ क्या हुआ। अदालत में पेश किए गए विवरण के अनुसार जब्त रकम करीब 30 मिलियन रुपए मोशन रुपए थी। FCC खासतौर पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें से लगभग 70 लाख रुपए बाद में कैसे गायब हो गए। जांचकर्ता अब मौके पर रकम जब्त किए जाने से लेकर उसे लाइन बार रख ले जाने, फिर सील करने और सुरक्षित रखने तक की पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है। FCC को संदेह है कि कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया हो सकता है। जांच का एक अहम पहलू ये भी है कि क्या टीम के किसी सदस्य ने अपने पद का इस्तेमाल कर किसी

0: लाख रुपए बाद में कैसे गायब हो गए। जांचकर्ता अब मौके पर रक जब्त किए जाने से लेकर उसे लाइन बार रख ले जाने, फिर सील करने और सुरक्षित रखने तक की पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है। एफसीसी को संदेह है कि कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया हो सकता है। जांच का एक अहम पहलू ये भी है कि क्या टीम के किसी सदस्य ने अपने पद का इस्तेमाल कर किसी है। इस मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अपने अगले बुलेटिनों में ज्यादा जानकारी के साथ आएंगे। मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका के नए उच्चायुक्त अब अपने पद पर कार्यरत हो गए हैं। हेनरिच जोवानी एप्रिल ने आज 18 अगस्त को राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुब के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। ये मुलाकात शातोगेजवी में हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नाम ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन को 100% समर्थन देना जारी रखेगा। उनका एक बयान मॉस्को की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें हाल ही में रूस ने यूक्रेन के हमलों में ब्रिटिश निर्मित ड्रोन के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद परिणाम भुगतने की बात कही गई है। बर्नाम ने कहा कि वे केवल अच्छे समय के दोस्त नहीं, यूक्रेन को जब उनकी जरूरत होगी वे उनके साथ खड़े रहेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले ब्रिटेन में रूसी दूतावास ने ब्रिटेन पर यूक्रेन संकट को जानबूझकर बढ़ाने का रास्ता चुनने का आरोप लगाया था। दूतावास ने कहा कि संघर्ष में ब्रिटेन की भागीदारी जितनी गहरी होगी उसे उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: पता तेरा, what a wonderful song to start with. Your Raftaar vibes here on RM2 Radio. Must be good afternoon. 4:10 अभी 10 मिनट हो रहे हैं. मनीषमा के साथ यू ही बस निभाते रहिएगा with all the best songs here from 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी कि 2 घंटों का सफर हमारे साथ यू ही बस मुस्कुराते हुए बिताइएगा.
1: Raftaar vibes, filmy rides.
2: RM2.

बंधु कॉकटेल टू बंधु 2.0 मूवी से, एक्चुअली द कॉकटेल 2 मूवी से बंधु 2.0 वर्शन. आई लव दिस वन. आई होप यू आर लाइकिंग द वाइब. आई होप यू आर लाइकिंग द बीट्स ऑफ द सॉन्ग्स. वैसे यहाँ पर आपके मैसेजेस डेडिकेशंस वेलकम हियर ऑन 549 एंड 129 फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग. चुनरी चुनरी हियर गो. डांस करो, एंजॉय करते रहो. आपके आफ्टरनून को मजेदार बनाने के लिए हम तो यहीं पर ठहरे हैं.

0: चार बजकर अभी 40 मिनट हुए हैं, बस थोड़ी देर में आपको ले चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक। सच हार्ट ड्रॉप, राखी और रानी की मूवी से लिया गया ये गाना, स्पेशली फॉर ऑल दोस जो कि इस आफ्टरनून में बस एडम टू रेडियो मस्ती की गाने क्या लव टू था रहे हैं। हियर वी गो, छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक। ओके जी,
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: ou paye impôt, climatiseur ou frigidaire, nouveau règlement pour Energy Efficiency Management Office, IEMO, applique pour tout ban impôt à terre et particulier qui paye impôt ban l'appareil pour vendre ou soit pour votre propre cuisine, bureau ou la case. Sa nouveau règlement-là assure qui ban l'appareil-là respecte ban norme l'énergie. Alors, avant ou faire ou ban démos pour impôt aircon ou frigidaire, assurez qui ou fin enregistrer comment impôt à terre et qu'enregistrer ou l'appareil avec IEMO. La douane, pas pour autoriser ou dédouane ou corgaison, si vous payez un certificat IIMO. Pour plus d'informations, contactez Energy Efficiency Management Office, l'eau 206 80 70.
3: Chan live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SVICC Pai. Join us for the biggest Chan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
1: RM2
4: Radio Mustang.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Masti in the mix.
3: 4:45 होने को हैं. आप जुड़े आर इन टू रेडियो मस्ती एंड गुड आफ्टरनून टू अरविंद जी फॉर द स्पोर्ट्स अपडेट्स.
4: Good afternoon आपको. Good afternoon Radio Masti listeners. The latest from the sports world. आज UEFA Champions League के प्लेऑफ के 3 मैच खेले जाएंगे. प्लेऑफ का मतलब ये होता है कि एक अले रेतू यानी फर्स्ट लेग और सेकंड लेग, और इसमें से जो क्वालिफाई होगी वो ग्रुप स्टेज में जाएगी. जो ग्रुप स्टेज जिसमें काफ़ी पैसे मिलते हैं UEFA Champions League में खेलने के लिए, इसीलिए काफ़ी मेहनत काफ़ी संघर्ष है आज के मैचों में. दिनामो ज़ाग्रेब वाइकिंग टीम का स्वागत करेगा Fenerbahçe, ओलंपिक लियों और लेवस्की ए के एथेंस. Fenerbahçe और लियों ये दोनों चैंपियंस लीग में कई बार खेल चुके हैं. इस बार इनमें से केवल एक टीम क्वालिफाई होगी. होम एडवांटेज Fenerbahçe के लिए, क्योंकि तुर्की में जाकर खेलना आसान नहीं होता है. तद लियों में इनका स्वागत किया जाएगा, तब देखा जाएगा. कल बाकी मैच सेल्टिक LASK, बियर्शेवा, साबा, नेक, बोडोग्लिंत, स्लोवान, सेलिये, ये कल के मैच हैं. आज UEFA चैंपियंस लीग के अलावा नेशनल लीग कप के भी मैच खेले जाएंगे, कई मैच होंगे. क्लब फ्रेंडलीज में हेडनहैम का मुकाबला बायर्न म्यूनिख से होगा, और दुनिया भर में इधर उधर चैंपियंस लीग के अलावा फ्रेंडली मैच भी रखे गए हैं. तो इन सब पर आपको जानकारियां देते रहेंगे. ट्रांसफर बाजार में काफी कुछ होने लगा है. न्यूकासल यूनाइटेड ने 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर बेनफिका के खिलाड़ी डेडिच को साइन किया. डिफेंडर है अमर डेडिच, जो खेलेगा या नहीं लिवरपूल के खिलाफ इस संडे को ये देखना है. माचियास जेजल, जिसके साथ वो काम कर चुका है, ऑस्ट्रियन टाइटल जीतता था रेड बुल साल्ज़बर्ग के साथ 2023. उसने कहा कि उसके लिए बहुत सम्मान की बात है, आज 24 साल का हो गया और अपने बर्थडे पर न्यूकासल यूनाइटेड में आ गया है खेलने. इस साल भी लगता है अलेक्जेंडर इसाक की तरह ट्रांसफर सागा होने वाला है, लेकिन इस बार मैनचेस्टर सिटी एंजो फर्नांडेज के पीछे हैं. एंजो फर्नांडेज ने बोल दिया है चेल्सी को कि वो जाना चाहता है. चेल्सी ने कहा 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग लाओ और जाओ. 14 अगस्त का अल्टीमेटम भी रखा था, लेकिन ये पूरा हो गया. अब डेडलाइन पूरा हो गया, कौन उसे खरीदेगा अभी तक कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आया है. पिछले साल आपको याद होगा न्यूकासल यूनाइटेड

0: ईसाक को बेचने के लिए तैयार नहीं था, ईसाक जाने के लिए तैयार था, ट्रेनिंग भी नहीं की, स्ट्राइक पे चला गया था। अंत में 125 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर लिवरपूल में आया। आकर क्या हुआ ये अलग बात है, लेकिन ये सागा एंजो फर्नांडिस के साथ भी होने वाला है ऐसा लगता है। क्रिकेट में श्रीलंका और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच जारी है। भारतीय टीम केवल 193 रन बनाकर आउट हुई आज 193। तो अब श्रीलंका को अभी चाहिए 324 रन। चार विकेट खो चुकी है श्रीलंका की टीम अपने दूसरे इनिंग्स में 48 for 4। आज का सेशन तीसरा सेशन चल रहा है और कल डे 5 यानी आखिरी दिन का खेल। चार विकेट गिर चुके हैं, छह विकेट इतने समय तक बचा रखना थोड़ा आसान नहीं है, इसीलिए एडवांटेज इंडिया कह सकते हैं। आज क्या अभी जो बॉलिंग चल रही है भारतीय टीम की ओर से, मानव सुतर दो विकेट ले चुका है, फिर रविंद्र जडेजा भी विकेट ले चुका है। तो इन दोनों ने कमर तोड़ा था श्रीलंका का, अब देखते हैं इस बार क्या करेंगे क्रिकेट श्रीलंका और इंडिया के बीच। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आई विल कैच यू टुमारो मॉर्निंग, टिल देन हैव अ मस्ती टाइम विद रेडियो मस्ती। टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स अरविंद जी।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: RM2
4: Radio Musti.
3: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सब अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करें। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी एकोलोजी खा। इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आशर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
5: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
6: Tech Mag, powered by
7: 365. Bien plus encore.
8: Think deleting your cookies is enough to protect your privacy online? Think again. Many websites now use a technique called browser fingerprinting. Instead of storing information on your device, they analyze details such as your browser version, screen resolution, fonts, operating system, and even graphics settings to create a unique digital profile of your device. Privacy experts say this type of tracking has become more common as traditional third-party cookies are being restricted. Unlike cookies, browser fingerprints can be much harder for users to detect or delete. The good news is that many modern browsers now include stronger privacy protections, and keeping your browser up to date can help reduce some forms of tracking. The next time you browse the web, remember, even if you've cleared your cookies, your browser could still be revealing more about you than you realize.
6: Tech Mag was powered by
7: 365. Bien plus encore.
3: RM2
4: Radio Musti.

हो कहाँ खोए हो अपने परेशानियों में ही ना. लेकिन यार व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट समथिंग रियली पॉजिटिव दैट हैपेंस इन योर पास्ट यू नो फ्यू डेज एंड जस्ट एंजॉय लाइफ एज इट कम्स टू यू. यहाँ पर वेलकम. 5:11 हुए हैं. आप जुड़े हैं आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. भूल के सारे किंतु परंतु बस हमारे साथ यूं ही एंजॉय करते रहिएगा. छोटा सा ब्रेक.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: Well, that was super.

0: क्रेजीज के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्राइडे नाइट हम पहुंच गए हैं. नो नो नो, इट्स ओनली ट्यूसडे 18 अगस्त. वैसे यहाँ पर बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट गाना, स्पेशली फॉर ऑल दोस ट्यूनिंग टू RM2. एंड आपके मैसेजेस आ रहे हैं भरपूर, पढ़ेंगे 5491294 पर भेजते रहिएगा. यो ही साथ निभाती रहिएगा. All the best goes out to each and everybody tuning to RM2 Radio Masti.
1: RM2 Radio Masti.

0: fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: जी अभी के लिए रफ्तार एडवाइस में पहुंचा देते हैं आप तक ये एक फैशन टिप। वैसे एक बात मैं एडवाइस में करना चाहती हूँ कि यार अगर आप ना ऑप्ट करना चाहते हैं कलर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो अलग अलग शेड्स के साथ एक ही कलर टोन यू नो डिफरेंट डिफरेंट टोन्स आल्सो यू कैन जस्ट मिक्स एंड मैच डिफरेंट जैसे कि ब्लू लाइट ब्लू स्काई ब्लू और नेवी ब्लू तीनों को मिक्स करके ऊपर से नीचे तक आप ब्लू कोड का जो कलर है आप यूज कर सकते हैं एंड यू नो बी कंफर्टेबल आल्सो वेयर स्माइल मिनिमम ज्वेलरी और ऊपर से एक स्कार्फ या तो यू नो अ बेल्ट आल्सो दैट कैन अडॉर्न योर ड्रेसिंग एंड ऑल। सो आई होप आपके लिए अगर ये सही है आपके वार्डरोब में पा सकते हैं आप खुद के लिए जो कलर कोड्स है ब्लू या फिर बेज या फिर अलग अलग कोड अलग अलग कलर लेकिन द सेम कलर विद डिफरेंट टोन्स ऊपर से नीचे तक। ये थे आपके लिए फैशन टिप विद मी मनीषमा ऑन आरएम2 इट्स योर रफ्तार वाइब्स।
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

इसी गाने के साथ जाने का समय हो चला है. यू टेक केयर, आई विल मीट यू टुमारो 9 से लेकर 12 बजे. और दिव्याड़ी यहाँ पर भरा भरा स्टूडियो है और मस्ती करेंगे. इससे पहले 6 बजे के समाचार आप सुन पाएंगे थोड़ी देर में.

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: घड़ी मिलाते चलिए शाम के 6 बजे हैं। अगस्त 2026 के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कई अहम फैसलों के साथ सदैक का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस की आर्थिक बदलाव की योजनाओं को सामने रखा। देश में ग्रीन डेटा सेंटर और डिजिटल एम्बेसी विलेज स्थापित करने का ऐलान। सदस्य देशों से मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति का पूरा लाभ उठाने का भी आह्वान किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में 6 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी। मामला वाली दिपैत में एक कारोबारी के घर हुई तलाशी और वहां मिली बड़ी रकम से जुड़ा है। FCC ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कार्रवाई में किसी तरह का करप्शन हुआ था या नहीं। यूनिसेफ की प्राकृतिक खूबसूरती को बचाने के लिए नई योजना तैयार। द्वीप पर इको पार्क और इको म्यूजियम बनाने की तैयारी। मकसद है प्रकृति की रक्षा के साथ पर्यटकों को यहां की जैव विविधता से और करीब जोड़ना। और अमेरिका में मेता के खिलाफ बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़ा बड़ा मुकदमा शुरू। 29 राज्यों का आरोप है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के कुछ फीचर्स युवाओं को लंबे समय तक इन मंचों पर बनाए रखने के लिए तैयार किए गए। मेता ने आरोपों को खारिज किया। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देती हैं। डर्बन में सादिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस में जारी आर्थिक बदलाव की दिशा और भविष्य की योजनाओं को सामने रखा। उन्होंने देश में कैरियर न्यूट्रल ग्रीन डेटा सेंटर और डिजिटल एम्बेसी विलेज स्थापित करने की सरकार की योजना का भी ऐलान किया। ऐसी पहल जिनका लाभ पूरे इलाके को भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने सादिक के सदस्य देशों से मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति का पूरा लाभ उठाने का भी आह्वान किया। अब्दुल बुला की गीता सुनारायण।
6: कल दोपहर बाद डरबान में सदैक के राष्ट्र नेताओं और सरकार प्रमुखों के सामने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी चुनौतीपूर्ण स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने खास तौर पर मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा अफ्रीका तक पहुंच के लिए मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति पर भी बात की। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की। उनके अनुसार तकनीक के क्षेत्र में मॉरिशस की विभिन्न

0: पहल से पूरे अफ्रीका को भी लाभ मिल सकता है।
1: Pleased to inform you that Mauritius is willing to set up a career-neutral green data center.
0: मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मॉरिशस एक career-neutral green data center स्थापित करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रस्ताव है कि हम अपने अफ्रीकी साझेदारों के साथ मिलकर अफ्रीका में एक सोवरेन AI और रेजिलियंस कैंपस स्थापित करें। शुरुआत में इसमें SADC के सदस्य देशों के डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन बाद में इस तरह की डिजिटल व्यवस्था को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप तक विस्तारित किया जा सकेगा। हम एक डिजिटल एम्बेसी विलेज की कल्पना कर रहे हैं, जहां अफ्रीकी देशों को अपना सुरक्षित और डिजिटल वातावरण मिल सके। ये वातावरण भौतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन उन्हें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों का लाभ होगा। यही वो विरासत है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं। मॉरिशस की ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में संभावनाओं पर भी डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने बात की। उन्होंने मॉरिशस में इस समय चल रहे आर्थिक बदलाव पर भी जोर दिया। मॉरिशस का प्रस्ताव है कि हमारा समुदाय मिलकर एक वैश्विक ब्लू बेल्ट पहल की दिशा में काम करें। ऐसी पहल से समुद्री संरक्षण को मजबूत करने, टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, ब्लू कार्बन परियोजनाओं को समर्थन देने, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार करने, समुद्री संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने और समुद्र के बेहतर एवं समन्वित प्रबंधन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मॉरिशस ने आर्थिक बदलाव के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। हमारे पिछले बजट में ऐसे सुधार पेश किए गए हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाना है, साथ ही ग्रीन और डिजिटल बदलाव को तेज करना और देश की प्रतिस्पर्धा की क्षमता को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। अंत में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने इस बैठक में मौजूद सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। उनके अनुसार ये बैठक एक ज्यादा मजबूत, सक्षम और बेहतर तरीके से एकीकृत SADC दक्षिणी अफ्रीकी समुदाय के निर्माण में योगदान देगी।
2: डर्बन में SADC का 46वां शिखर सम्मेलन कई अहम फैसलों के साथ संपन्न हुआ। सदस्य देशों के बीच सहयोग और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर खास जोर रहा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए SADC यूनी वीजा समझौते को मंजूरी दी गई। कृषि व्यापार को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए धन जुटाने पर भी सहमति बनी। साथ ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को लेकर सदस्य देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। डर्बन ICC में कल शाम समापन समारोह के दौरान सम्मेलन के फैसलों और निष्कर्षों की जानकारी दी गई। यूनिसेफ की प्राकृतिक खूबसूरती को बचाने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है। इसके तहत द्वीप पर इको पार्क और एक इको म्यूजियम बनाने की तैयारी है, जहां आने वाले लोग यहां के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और प्रकृति के बारे में जान सकेंगे। इस योजना में स्थानीय लोगों, विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी साथ लिया जाएगा। मकसद है द्वीप की खूबसूरती को बचाना और यहाँ आने वाले पर्यटकों को प्रकृति से और करीब से जोड़ना। माधवी जगन्नाथ, गीता नारायण।
0: थुडुडुस के नीले और साफ पानी से घिरा यूनिसेफ हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस जगह की पहचान और लोकप्रियता के साथ साथ इसकी प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से टापू का प्रबंधन करने वाले रिवेओ ग्रुप ने अपनी सहायक कंपनी लॉजिया देसिल लिमिटेड के माध्यम से एक टिकाऊ पुनर्विकास योजना तैयार की है।
3: Et c'est à cause de sa raison là qu'il nous bizarre remettre un cadre, une organisation pour qui nous on a une vision de préservation.
0: Rivéo ke chief operations officer Grégory Coquet kehte hain Ilocef uska samudra aur paryavaran dabav mein hai, isliye ise punarvyavasthit karna chahiye jisse iska sanrakshan ho sake. Hum 2027 ke aarambh mein pehle karya shuru karenge और इसके बाद अगले 10 सालों के दौरान कई चरणों में विकास कार्य जारी रखेंगे। पर्यावरण को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा सामाजिक पहलू भी हैं, जहां ऑपरेटरों को यूनिसेफ के आसपास अपना काम जारी रखना पड़ेगा। इस योजना के पहले चरण में एक इको पार्क और एक इको म्यूजिक बनाया जाएगा। इनकी रूपरेखा टिकाऊ विकास की रणनीति पर सलाह देने वाली कंपनी डायनामिया ने तैयार की है। कंपनी के निदेशक Thierry Le Breton कहते हैं,
4: tout le travail d'un éco-parc, c'est précisément trouver qui manière nous capable retrouve cette symbiose, ce lien entre une activité humaine et un endroit qui joli, mais quand nous pas dégrade l'île et nous servit.
0: Éco-parc में मानवीय गतिविधियों और एक सुंदर जगह के बीच संतुलन

0: बनाए रखना है। इसका प्रयोग करके इसे बर्बाद नहीं करना है। इको पार्क के प्रवेश में इको म्यूजियम स्थित रहेगा, जिसमें इस जगह में पाई जाने वाली सभी तरह की मछलियां और पौधे होंगे। मॉरिशन वैज्ञानिक यहां अपना काम करने आएंगे, अपने खोज कार्य जारी रख सकेंगे। इस परियोजना में मैंग्रोव के नीचे स्थित दलदल वाले क्षेत्रों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। यूसेफ में पाए जाने वाले मैंग्रोव बहुत ही समृद्ध हैं। ये सभी तरह के जीव जंतुओं की नर्सरी हैं। समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं, वे यहीं पैदा होते हैं, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। अंतिम उद्देश्य पर्यटन के विकास को इस तरह व्यवस्थित करना है कि इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्र के इकोसिस्टम का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।
1: डॉक्टर जीतू अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के दौरान लापरवाही का आरोप है। 26 साल की एक महिला का कहना है कि डिलीवरी के समय लेबर वार्ड में एक मिडवाइफ ने उसके बच्चे के सिर को वापस ढकेल दिया। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हमारे सूत्रों का कहना है कि डिलीवरी के दौरान इस तरह के कुछ कदम सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकती है। आखिर सामान्य तौर पर डिलीवरी कैसे होती है और अगर जन्म के समय बच्चे की सेहत को लेकर कोई खतरा दिखाई दे तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस पर हम ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ी देर में वापस आएंगे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में अब तक 6 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी। मामला मार्च 2024 में वालिदिप्रेत में एक कारोबारी के घर हुई तलाशी से जुड़ा है। इस मामले में 2 और पुलिसकर्मियों को कल गिरफ्तार किया गया। इसके साथ अगस्त की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार पुलिस अफसरों की संख्या 6 हो गई है। मामला तलाशी के दौरान मिली एक बड़ी रकम से जुड़ा है। FCC अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कार्रवाई में किसी तरह का करप्शन हुआ था या नहीं। मामी रवातोमांग की जमानत याचिका पर सुनवाई के दूसरे दिन आज बेल एंड रिमांड कोर्ट में बहस जारी रही। सुनवाई के दौरान सामने आया कि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी FCC कारोबारी मामी रवातोमांग के खिलाफ जांच पूरी करने में 6 महीने से 1 साल तक का समय ले सकती है। ये जानकारी FCC के एक्टिंग चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन परमहंस अलियो ने मंगलवार को हुई तहकीकात के दौरान सामने आई है। उसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी है। बचाव पक्ष के वकील में कुशल लुबिन ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि उनके मुवक्किल 9 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्होंने मामी रवातोमांग के खिलाफ मामले में शामिल 2 शिकायतों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। जमानत के लिए दायर इस आवेदन पर सुनवाई बेल एंड रिमांड कोर्ट में जारी है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। पाई में बस का इंतज़ार यात्रियों के लिए रोज़ की परेशानी बनता जा रहा है, ख़ासकर लाइन 150 यानी कि रूट 150 को लेकर लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं। यात्रियों का कहना है कि बसें तय समय पर नहीं आती, कई बार लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और रविवार को बसों की संख्या भी कम हो जाती है। ये समस्या कई साल से चली आ रही है और शिकायतों के बावजूद हालात नहीं बदले। और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि डॉक्टर जीतू अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस सिलसिले में ज़्यादा जानकारी अनावेल वुलबेयर रजनी बेकर दे रही हैं। सुनते हैं कि आखिर सामान्य तौर पर डिलीवरी कैसे होती है और अगर जन्म के समय बच्चे की सेहत को लेकर कोई खतरा दिखाई दे तो डॉक्टर क्या करते हैं।
0: लाइनबैडक्स पोर्ट लुइस में एक महिला ने जीतू अस्पताल में शिशु को जन्म देने के दौरान चिकित्सा लापरवाही के एक मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस महिला के मुताबिक पिछले 10 अगस्त को उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन शिशु को जन्म देते समय कुछ असामान्य बातें पेश आई। उन्होंने बताया कि जब शिशु का सर बाहर आने लग रहा था तब मिडवाइफ ने अपने हाथ से इसे फिर से अंदर की ओर ढकेला। जीतू अस्पताल के गायनेकोलॉजी कंसल्टेंट इंचार्ज डॉक्टर हिलमा बुमा ने कहा,
2: Beaucoup fois, si comme j'ai un patient, c'est pas son premier enfant, mais l'une des autres enfants, nous connaît ce périnée, il est assez flexible. Et là, ce qui nous fait, nous bord ce périnée pour empêcher de déchirer. Et c'est là même qui nous bloque ce périnée et nous empêche, comme on dit,

0: gros stretch vers l'anus. Et si nous laissons, malheureusement, il est capable de déchirer l'anus et il est capable éventuellement causer un trauma.
1: कुछ मिनट बाद शिशु का जन्म हुआ, लेकिन कुछ गहन जांच करनी पड़ी। जीतू अस्पताल के ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर देवेन दौलत ने कहा,
2: un enfant qui naît, tout le temps il y a un pédiatre qui est présent. Right? C'est un pédiatre qui est entraîné comment pour faire la résuscitation d'un enfant qui est pas bien. Il examine lui et que là il peut décider s'il y a un problème, il prend un enfant là, il amène ça dans l'unité néonatale intensive, c'est-à-dire le NICU. Et que si je trouvais qu'il y a un problème au niveau saturation ou au niveau quelque part, et là je prends un enfant là, il y a de bête dans l'unité intensive néonatale.
1: इस मामले में मां ने अस्पताल के ड्यूटी मैनेजर के यहां शिकायत दर्ज की। अस्पताल में अंदरूनी जांच शुरू की गई है, जबकि इसके साथ साथ संदिग्ध चिकित्सा लापरवाही के लिए एक पुलिस जांच की जा रही है।
3: मॉरिशस दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक संबंधों में एक नया अध्याय। दक्षिण अफ्रीका के नए उच्चायुक्त हेनरिच जोवानी एप्रिल ने आज राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को अपना परिचय पत्र सौंपा। स्टेट हाउस में हुई इस मुलाकात के साथ उन्होंने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हम श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शांति से जुड़ा एक पवित्र समय है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गंगा तालाब में आस्था का यही गहरा भाव दिखाई दे रहा है। विशेषकर हर सोमवार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। पवित्र तालाब के किनारे गूंजते हर हर महादेव और भोलेनाथ की जयकार मानो मन को भक्ति से जोड़ रहे हो। अदिति अवतार।
4: गंगा तालाब हिंदुओं के लिए मात्र पूजा का स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, आस्था और एकाग्रता का एक केंद्र है। इस श्रावण मास के दौरान विशेष रूप से हर सोमवार को मंगल महादेव के चरणों में उपस्थित होकर हर व्यक्ति अपने तरीके से उनके प्रति भक्ति अभिव्यक्त कर रहा है। श्रावण मास की पूजा का आयोजन ही मॉरिशनों के बीच शिव भक्ति को एक अलग ही आयाम देने के उद्देश्य से पिछले 2019 से शुरू हुआ था।
5: नौजवानों के साथ मिल करके 2019 से लगातार हर साल हम यहाँ पर गंगा तालाब में श्रावण मास की पूजा करते हैं, श्रावण सोमवार की अभिषेक करते हैं और श्रावण मास के अंतिम वीकेंड में हम यहाँ पर 3 दिन का भव्य पूजा करते हैं। हर 6 घंटे में अभिषेक होता है और रुद्र महायज्ञ से पूर्णाहुति होती है। साल दर साल 2019 से साल दर साल भक्तों की तादाद बढ़ता जा रहा है और जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान शंकर के दरबार में भक्तों का इतना भव्य मेला लगा हुआ है।
4: कहा जाता है कि भगवान शिव को पूजने का कोई विशेष माध्यम नहीं होता। वे भोलेनाथ इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि उनकी भक्ति करने वाला शांत और स्वच्छ मन से ही उनसे जुड़ सकता है।
6: Le Béguin, ça Shivratri vibes là, donc nous pas besoin d'attendre uniquement février, mars pour nous gagner ça vibes là. Surtout, comme on le dit, nous faisons la bhakti. Donc pour moi, Shiva déjà lui donne moi un peace of mind.
7: Shiv ji ko Adi Yogi mana jata hai. Aur kehte hain ki yog वो है, वो जो मन की शांत हम चाहते हैं वो आदि योगी जो हम पूजा करते हैं इसके द्वारा होती है। योग क्या है? योग वो बोलते हैं जो मेडिटेशंस, जो मन की शांति हमें चाहिए होता है वो शिव जी की पूजा करने से ही होता है, शिव जी की साधना करने में ही होता है।
8: प्रिये शक्ति पुनुगे ला फोर्स नु प्रिये शिवा पुनुगे ट्रैंक्विलिटी
9: जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावी तस्थले गले वलंबे लंबे तांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मरवे चकार चंड तांडवम तनोतन शिव शिवम। महादेव हमारे कण कण में व्याप्त हैं, एक रे धागे में दिखते हैं। महादेव हर कण में हैं, हर क्षण में है, हमारे मन में, हमारे तन मन धन में है।
4: मर्शनों के बीच एक भाव हमेशा उजागर रहता है। कई लोग मानव सेवा को ही माधव सेवा मानते हैं। गंगा तालाब पर बहुत लोग प्रसाद और भोजन की व्यवस्था करके सेवा भाव प्रदर्शित करते हैं।

0: भगवान के नाम का गुणगान करते देखे जाते हैं। श्रावण मास के दौरान श्रद्धा और संगीत का यह अनूठा संगम गंगा तालाब पर न केवल शिव भक्ति अभिव्यक्त कर रहा है, बल्कि सेवा, सामुदायिक एकता और युवा सहभागिता की भावना को भी मजबूत कर रहा है।
1: जैसे सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि अमेरिका में मेता के खिलाफ बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़ा एक बड़ा मुकदमा आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। 29 अमरीकी राज्यों का आरोप है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में ऐसे फीचर्स जानबूझकर बनाए गए जो युवाओं को लंबे समय तक इन मंचों पर बनाए रखते हैं और उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। मुकदमे में मेता के सीईओ मार्क जुकरबर्ग समेत कई बड़े अधिकारियों की गवाही होने की उम्मीद है। आरोप साबित होने पर मेता को भारी जुर्माने के साथ अपने मंचों को बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। हालांकि मेता ने सभी आरोपों को खारिज किया है। इस पर तथा दुनिया भर की अन्य खबरों को सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
2: ऊंचे पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता और इन सब के बीच आस्था की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं के कदम, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जहां श्रद्धालु बाबा बुद्धा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पुंछ जिले के मंडी इलाके में स्थित बाबा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहां भगवान शिव के दर्शन प्राकृतिक रूप से बने सफेद पत्थर के शिवलिंग के रूप में किए जाते हैं। इसी पवित्र स्वरूप के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पहाड़ी रास्तों से गुजरते श्रद्धालु हाथों में धार्मिक ध्वज और वातावरण में गूंजते भगवान शिव के जयकारे, यात्रा के दौरान भक्ति का एक अलग ही वातावरण देखने को मिलता है। कई श्रद्धालुओं के लिए यहां पहुंचना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। रक्षाबंधन करीब है और हैदराबाद के बाजार राखियों से सज चुके हैं। रंग इतने, डिजाइन इतने कि पसंद करना भी मुश्किल हो जाए। कहीं पारंपरिक कुंदन राखी, कहीं चमकदार आधुनिक डिजाइन, तो बच्चों के लिए बार्बी वाली राखियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। हैदराबाद की यादव राखी दुकान वर्षों से इस बदलते सफर की गवाह रही है। एक दौर था जब राखी महज 10 पैसे में मिल जाती थी और आज यहाँ कुछ खास राखियों की कीमत 1000 रुपए तक पहुँचती है। समय के साथ कीमत बदले, डिजाइन बदले, पसंद भी बदली, लेकिन कलाई पर बांधा जाने वाला ये छोटा सा धागा आज भी भाई बहन के संबंध की वही पुरानी कहानी कहता है। केरला इन दिनों ओनम के रंग से रंग चुका है। यूनिवर्सिटी कैंपस में युवाओं ने इस पारंपरिक पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया। पारंपरिक परिधान, संगीत और साथ मिलकर त्योहार मनाने की खुशी। ओनम केरला की संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़ा पर्व है और कैंपस की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि परंपराएं केवल विरासत में नहीं मिलती, नई पीढ़ी उन्हें अपने अंदाज में जीती भी है और आगे भी बढ़ाती है।
1: बढ़ते हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर रजनी बेकर के साथ।
3: मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले कांटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर नम और अस्थिर हवाएं चल रही है, जो हमारे स्थानीय मौसम को रह रहकर प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी। टापू के आधे पूर्वी हिस्से में सामान्य से तेज बारिश होगी और सेंट्रल प्लाटू पर भी ऐसा होगा। कुछ इलाकों पर कोहरे छाए रहेंगे। कल आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे। टापू के आधे पूर्वी हिस्से में बादल घिरे रहेंगे और सेंट्रल प्लाटू पर भी थोड़ी वर्षा होगी। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। बारिश होती रहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह से इसमें सुधार आने लगेगा। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम

तापमान 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 26 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:57 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:29 पर सूर्योदय।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे सभी न्यूज़ बुलेटिन एमबीसी प्ले, एमबीसी नाउ और हमारी वेबसाइट mbc.mu पर भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, आप सभी को नमस्कार। अभी हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Shok samachar suniye. महात्मा गांधी रोड ट्वा बुचिक त्रियोली में, महात्मा गांधी रोड ट्वा बुचिक त्रियोली में 75 साल के 75 years old के श्री शरदानंद पाउदो, श्री शरदानंद पाउदो जिन्हें शरदानंद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनके घर ट्वा बुचिक त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस के शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमरो हाफ पास 1 PM। लाल बहादुर शास्त्री रोड सेंट जूलियन दुतमों में, लाल बहादुर शास्त्री रोड सेंट जूलियन दुतमों में 44 साल के 44 years old के श्री राजगनलाल सिबन, श्री राजगनलाल सिबन जिन्हें वकील के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके पिता प्रेमचंद सिबन के घर सेंट जूलियन दुतमों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमरो एट 11 AM। Avenue La Pérouse, Belle-Rose में, Avenue La Pérouse, Belle-Rose में 73 साल के 73 years old के श्री बिजमोहन सिरतन जिन्हें क्रिसुन सिरतन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर ला पेरोज बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेतु क्रिमेशन ग्राउंड ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। रॉयल रोड मोतायोगी में 68 साल की 68 years old की श्रीमती लीलावती कन्या पैदाश नाम उजायब और जिन्हें वीना के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे नवीन नंद कुमार कन्या के घर मोतायोगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9 AM। रुत कास्केट पाल्मा काट्रोबोन में 72 साल की 72 years old की श्रीमती मीराबाई रागू पैदाशम कहानू और जिन्हें शांति के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री आनंद रागू के घर पाल्मा काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। पीएस सिमोनेट स्ट्रीट फ्लोरियाल में 78 साल की श्रीमती कमलावती संजावन पैदाश्रम ठाकुर और जिन्हें कमला के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

वेल वेल जरा सी दिल में दे जगह तू जरा सा अपना ले बना एंड बिल्कुल जगह देने के लिए थैंक यू सो मच और दिल में इतनी जगह बाकी है कि हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ और लोग आकर उसमें बसर कर ले इट्स ऑलरेडी 7:32 दिव्या का साथ इन योर अवतार वाइब्स टिल 7 PM बिल्कुल मनीष मां आकर चली भी गई है और अभी के लिए दिव्या की बारी है आपको एंटरटेन करने के लिए टिल 9 PM जी हाँ रात्रि के 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है अभी के लिए तो चल रहा है आपका रफ्तार वाइब्स टिल 7, 7 से लेकर 9 बजे के बीच लेकर आएंगे आप लोगों के लिए इवनिंग लाउंज जहां पर कुछ कूल बातों के साथ साथ कूल गाने भी चलेंगे आप लोगों के लिए सो चलिए आप अभी के लिए तो बस हमारे गुड म्यूजिक को एंजॉय करते रहिए एंड इफ यू आर ऑलरेडी ऑन योर वे टू वर्क या फिर आप घर की ओर बढ़ रहे हैं आपको हम कहेंगे ड्राइव सेफ एंड केयरफुली जी हाँ कहीं पर लोग घर वापस जा रहे हैं तो कहीं पर लोग काम पर जा रहे हैं शायद आपका नाइट शिफ्ट है

0: और आपको लूट्स एंड लोड्स ऑफ करेज. आई नो नाइट शिफ्ट करना इट्स नॉट ईजी एट ऑल. अभी देखिए रात को बस लोगों को नींद ही आती है और ऐसे में आपको रात भर जगना है और काम करना है और ऐसे में वी शो अप हियर फॉर यू लेकर द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. तो चलिए दिव्या का साथ है और साथ में आपके मैसेजेस को वी भी हम वेलकम करेंगे ऑन 5499-1294.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

0: इससे आगे अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कहें तो भाई अभी के लिए कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, बस दिल को एग्जैक्टली वो बात पता है. वेल इट्स ऑलरेडी 7:49 PM एंड यहाँ पर आपके मैसेजेस का हम इंतज़ार कर रहे हैं एंड इंतज़ार करते करते कुछ मैसेजेस तो ज़रूर आ ही गए हैं. एंड चलिए यहाँ पर लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू लवली कपल आशीष एंड दिया फॉर द न्यू बोर्न बेबी, वेरी क्यूट डॉटर फ्रॉम दादा संजीव. दादी अंजनी आपकी बड़ी दादी हैं, भगवंती और सभी कालुआ जमुना एंड चिनापिया फैमिली की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार. एंड वंस अगेन मेनी कंग्रेचुलेशंस टू आशीष एंड दिया. एंड साथ में यहाँ पर आप कहते हैं गुड इवनिंग, नाइस सॉन्ग्स एंड डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय हस्बैंड और आपके बेटों के नाम. सो थैंक यू सो मच आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए. एंड साथ में यहाँ पर वी लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यश कुरीमन. आज बहुत बहुत खुशी का माहौल है आपके यहाँ. सो बेस्ट विशेज फ्रॉम सासू माँ, बेटा रायान, बेटे रायना, तनवीर, तेजल, आयशा, बहन वर्षा, बिनेश और कैट्रोबोन की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी शुभकामनाएं. सो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. डोंट फॉरगेट, हमारी और आपकी मुलाकात तो होती रहेगी अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

बनाने की कसम खाई है, दिल में जगह देने के लिए एक बार फिर से आपको शुक्रिया। और प्यार में, मोहब्बत में लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग कसमें खाते हैं और इस कसम को ऐसे ही निभाते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी अमॉन्ग दोज टू रेस्टोर फेथ इन लव, तो बिल्कुल अगर आपने कसमें खाई है तो इसको निभाना तो पड़ेगा ही। चलिए, यहाँ पर प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा, और हमने दोस्ती की है तो इसको ही निभाने के लिए हम एक बार फिर से आ चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज। ऑफ कोर्स टाइम टू सिट बैक रिलैक्स और हमारे खूबसूरत गीतों को एंजॉय करते रहिए नॉन स्टॉप टिल 9 PM। आपको मौका मिलेगा कुछ खूबसूरत गीतों को सुनने के लिए और

0: अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए थ्रू सम 90s गाने. एक्चुअली क्या है ना, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो हमारे दिल के बहुत ही करीब होते हैं और अचानक से जब इस गाने को सुनने को मिलता है ऑन रेडियो तो इसका एहसास ही कुछ अलग होता है. और चलिए अभी के लिए हम यही चाहते हैं कि आप अपनी यादों के इस पिटारे को एक बार फिर से खोल दें और ट्राई टू रिवाइव द ब्यूटिफुल एंड द गोल्डन मेमोरीज. और चलिए साथ में आपके मैसेजेस का भी इंतजार रहेगा ऑन 5499-1294. यस, 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2,
1: रेडियो मस्ती.

0: की नजरों से देखो तो बस हम जिगर का टुकड़ा हैं और अगर आप हमारे नज़रिए से देखो तो वो भी हमारे जान से भी प्यारी हैं। बस ऐसे ही अल्फाज एक दूसरे के लिए हमेशा एक्सप्रेस करना है, जताना है और बताना भी है। चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज। बहुत ही प्यार से आपके मैसेजेस को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर किसी ने हमें बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है एंड आपने कहा है कि यू ऑलवेज लाइक टू लिसन गाने ऑफ यस्टर ईयर्स एंड आप कहते हैं कि आई होप दैट यू विल कंटिन्यू प्लेइंग दिस वंडरफुल ओल्ड हिट्स एवरी डे, प्लीज कीप दिस ब्यूटिफुल ट्रेडिशन अलाइव फॉर अस। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है, 12 से 2 हमेशा पुराने गाने ही चलते हैं। एंड थैंक यू सो मच विष्णुदेव बिसे सर जी आपके इस ब्यूटीफुल मैसेज के लिए। एंड आप कहते हैं कि हमेशा जब से आप छोटे हैं तब से आप MBC सुनते आ रहे हैं एंड 70s, 80s, 90s के गाने आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड आपको मौका मिलता है टू रिवाइव द ब्यूटीफुल गोल्डन मेमोरीज ऑफ द यस्टर ईयर्स, तो बिल्कुल आपको मौके भी मिल रहे हैं और बहाने भी मिल रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हेलो दी, प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग, बातें कभी ना तू भूलना, स्पेशली फॉर जान रवि हु इज ड्राइविंग राइट नाउ फ्रॉम कारिश। और साथ में यहाँ पर आप कहते हैं नमस्ते, गुड इवनिंग, प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माई टू प्रिंस is Revansh, Rayansh, wife Vashini, mom Veda from Vijay Puludu of Highlands. If you could please play Ae Mere Bete, abhi ke liye thoda mushkil hai, but definitely 12 se 2 ke beech mein hum request karenge hamare colleagues ko isko chalane ke liye. And saath mein yahan par aap kehte hain gana chala dijiye please ho sake to. ओ मामा डियर मामा हैप्पी बर्थडे टू यू एंड आपके लिए भी किस ओकेजन पर आपने बता नहीं, ओके ओके आई गॉट इट, आपका मैसेज यहाँ पर थोड़ा इनकम्प्लीट आया था। एक्चुअली आपने कहा हेलो नमस्ते जी, मैं रेशमा लावांचुआ से, आज मेरी प्यारी माँ का बर्थडे है, 74 ईयर्स ऑलरेडी, माँ शीला गणेश रिविया जोहोपा की रहने वाली हैं और एक प्यारा सा गाना उनके नाम। बिल्कुल जस्ट टू लेट यू नो कि अभी के लिए हम पुराने गाने नहीं चला रहे हैं बल्कि कुछ नए, कुछ 90s के गाने आप लोगों के लिए हम चला रहे हैं। पुराने गानों के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पर 12 से 2 के बीच आप इन गानों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए अगला गाना उन तमाम लोगों के लिए जो हमें सुन रही हैं और आपकी प्यारी मामा के लिए भी जिनका बर्थडे है आज।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

अगर आप सही इंसान से प्यार करते हैं तो पछताने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. इसलिए हम कहते हैं ना कि प्यार का डेफिनेशन प्यार को डिफाइन नहीं करता है, प्यार का डेफिनेशन उस शख्स को डिफाइन करता है जिसके साथ आप हैं एक्चुअली. इसलिए हर किसी का लव डेफिनेशन सेम नहीं होता है. कुछ लोग कहते हैं लव हर्ट्स, कुछ कहते हैं कि प्यार से ज़िंदगी सवर जाती है. अब ये डिपेंड करता है कि आप किससे प्यार करते हैं और वो आपको किस हालत में और कैसे हालात में आपकी ज़िंदगी में रख रहा है या फिर रख रही है. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपकी लाइफ आपके हाथ में है और आपकी डेस्टिनी भी. शायद इसी वजह से कहते हैं ना कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. और आप देखिए, अगर आपकी किस्मत आपके हाथों में है तो आप अपनी इस प्यार भरे दिल को भी सोच समझ कर किसी को सौंपना चाहिए, क्योंकि प्यार खिलौना नहीं है और ये दिल भी खिलौना नहीं है. स्पेशली जज्बातों के साथ खेलना, इट्स नॉट फेयर. तो इसलिए सोच समझ कर भी प्यार करना चाहिए. इसलिए तो कभी कभी प्यार में दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ ही जाता है. बट आई जस्ट होप कि हमेशा जीत दिल की ही हो एंड हमेशा दिल की सुननी चाहिए. एंड हमेशा हम कहते हैं ना कि योर हार्ट माइट बी ऑन द लेफ्ट साइड बट इट्स ऑलवेज राइट. और हम यही चाहते हैं कि आप जब भी प्यार करें तो आप

0: का प्यार आपको ये एहसास दिलाए कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है एंड ट्रस्ट मी जब आप सही इंसान से प्यार करते हैं ना तो आपकी जिंदगी सवर जाती है। अगर आप हमसे ये कहेंगे कि प्यार दुख देता है तो इसका मतलब ये है दैट यू आर इन लव विद द रॉन्ग पर्सन।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: खामोशियों में भी एक आवाज छुपी होती है, बस इसको जानने पहचानने और सुनने की देर होती है। कहते हैं ना कि जिंदगी आप उस तरीके से जीते हैं जिस तरीके की नजर और नजरिए की बात होती है। तो आई जस्ट होप कि आप अपनी जिंदगी को प्यार से स्पेंड करें, और उतने ही प्यार से एक बार फिर से हम आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आ गए हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है न्यू इवनिंग लाउंज। चलिए कुछ आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल दोज जो अब्रॉड में भी कनेक्टेड हैं, थैंक यू सो मच हमें याद करने के लिए, एंड कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस, क्योंकि हम जानना चाहेंगे हाउ यू आर स्पेंडिंग योर ट्यूजडे इवनिंग।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

क्या बात है तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ हो सच में ये किसी का प्यार जब हासिल होता है जिंदगी में तो ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया पूरी कायनात को जीत सकते हैं एंड ट्रस्ट मी ये फीलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जहां पर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खूबसूरत है और सब कुछ सही है एंड चलिए यहां पर जितने भी सारे लोग प्यार में डूबे

0: हुए हैं हमारी गीतों को सुनने के बाद. ऑफ कोर्स हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जान के कि यू आर हैविंग द बेस्ट ऑफ योर मोमेंट हमारे गीतों के साथ. एंड यहाँ पर किसी का मैसेज आया है. हेलो जी, आई एम शालिनी फ्रॉम काट्रूबोन. वांट टू विश माय कजिन ब्रदर केविन रामचंद बो वॉयज. एंड आप कहते हैं कि बोन हॉथे टू ऑल टीचर्स. वॉन्ट टू से थैंक यू टू माई हस्बैंड यश जी आप अमाल एंड माई डॉटर मोइशा फॉर ऑल द हेल्प एंड डेडिकेशन. हाँ, मुझे पता है जब बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और अगले दिन वो स्कूल पर जाते हैं, ये अलग बात है कि हमें थोड़ा और रेस्ट करने को मिल जाता है. लेकिन जैसे ही वो लोग स्कूल चले जाते हैं ना, घर थोड़ा सूना सूना सा लगता है और उनकी कमी खटकने लगती है. एंड चलिए, आई जस्ट होप कि ये आप बिल्कुल समझेंगे और जानेंगे कि बच्चों को तो स्कूल तो जाना है ही. एंड स्कूल जाते ही उनको बड़ा कुछ नाम करना है और बड़ा काम भी हासिल करना है. एंड चलिए, बो को हाश टोल दोज जिनकी बहुत ही जल्द स्कूल शुरू होने वाली है, हमारे बच्चा पार्टी को. एंड टोल दोज जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ, मे बी यू आर जस्ट हैविंग सम रिलैक्सिंग मोमेंट, या फिर आप इस वक्त काम करते करते हमारा साथ दे रही है. स्पेशली टोल दोज जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, आपको बो को हाश.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
2: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. कहते हैं ना कि टू लव एंड टू बी लव्ड इज एवरीथिंग. इट्स एन एक्स्ट्रा स्पेशल फीलिंग और ये स्पेशल फीलिंग आपको हम यहाँ पर एहसास दिला रहे हैं आपको पैम्पर करके बाय मेकिंग यू लिसन टू दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल गाने और साथ में आपको ये एहसास दिलाकर कि प्यार एक बहुत ही प्यार भरा एहसास है. 8:41 ऑलरेडी दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वन सुनीति चौहान एंड विशाल मिश्रा की आवाज़ में. इन खूबसूरत आवाज़ों के साथ आप अपने दिल से दिल मिलाइए और आवाज़ से आवाज़ ताल से ताल मिलाकर गाते गुनगुनाते चलिए हमारे साथ. प्यार हो बस प्यार हो हर बार हो तुमसे ही हो.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में बस उसका शायद घर है, दिल में उसका नाम है, दिल को पता है उससे प्यार है लेकिन फिर भी जुबा तक नहीं आ रहा है। चले प्यार किया है तो जताना भी पड़ेगा। And I just hope कि this evening आप अपने दिल की बात उस तक ज़रूर पहुंचाएंगे जिससे आप प्यार करते हैं या फिर जिसको हमारे गीतों को सुनने के बाद आप याद कर रहे हैं। Well, it's already 8:56, हमारे जाने का समय आ चुका है। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम 7 से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम हमारे सभी लिसनर्स का जो हमारा साथ देने आए हैं. दैट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स. मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर रात के 12 बजे तक. वी आर गोइंग टू हैव सम ब्यूटीफुल रोमांटिक गाने आपके नाम. सो स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय द गुड म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती.

वेल फ्रेंड्स, रात का वक्त कुछ ऐसा ही होता है। दिन भर की जो फीलिंग्स होती है वो रात में जो है वो उभर कर सामने आती है। सो इफ यू ऑल्सो थिंकिंग अबाउट समवन वेरी स्पेशल, आई एम श्योर ये जो गाने हैं आपको खास, आपको स्पेशल फील जरूर करवाएंगे।

Well, like we say, some nights are meant to sleep and some nights are meant for memories, music and someone special. So, अभी अगर आप भी किसी special इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनका ख्याल बार-बार ज़हन में आ रहा है, so ये जो गाने हैं, हम उनके नाम dedicate करेंगे and of course, आपकी तरफ से कुछ romantic गाने हम चला रहे हैं for everyone who's present here on the waves of RM2 Radio.

वेल जब किसी खास का ख्याल आता है तो हर गाना खास हर गाना स्पेशल लगता है सो आज की रात हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारा ये जो टाइम है प्यार के नाम एंड लाइक वी से द फीलिंग ऑफ लव इज सो स्पेशल सो एवरीवन जिन्होंने इस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है हमें पता है ये गाने आपको एक्स्ट्रा स्पेशल महसूस करवा रहे हैं सो कीप एंजॉयिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू RM2 रेडियो मस्ती

और चलिए दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर, जहां पर आपका साथ जरूरी है, सो कहीं मत जाइए, हमारा साथ निभाइए। दैट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स परी के साथ।

सो वार्म वेलकम आप सभी का जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। रात के 10 तो बज चुके हैं लेकिन प्यार का एहसास अभी भी जारी है ऑन लेट नाइट ग्रूव्स। मैं हूं परी आपके साथ और स्वागत करते हैं हमारे सभी लिसनर्स का।

तो चलिए दोस्तों, आज की रात लेट योर हार्ट स्पीक आउट. और कभी कभार कहते हैं ना कि वर्ड्स काफ़ी नहीं होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में वी ऑलवेज हैव सम सॉन्ग्स जो आपकी फीलिंग्स को परफेक्टली बयां करते हैं. सो आज की रात प्यार के नाम इन खूबसूरत गीतों के साथ.

So well, that's your late night grooves, जहां हर गाना एक feeling है, हर melody एक memory है, and every love story deserves a soundtrack. वही soundtrack, वही गाने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं. Keep enjoying the beautiful songs, keep enjoying the best mix of music on RM2 Radio Masti.

वेल फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं कि प्यार हमेशा ग्रैंड एंट्री नहीं लेता, कभी कभार एक कन्वर्सेशन से बातें शुरू होती है, कभी एक स्माइल से और कभी किसी के साथ एक कंफर्टेबल साइलेंस से। सो आपने भी अगर ये एहसास महसूस किया है सो हमारे गाने आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल लगने वाले हैं। चलिए अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ।

और चलिए दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आवर। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि प्यार का एहसास है खास, और इसी एहसास को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टे कनेक्टेड, आरएम2 रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ, एंड दैट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स।

और चलिए दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ आपका एक बार फिर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। रात आगे बढ़ती जा रही है और प्यार का एहसास थोड़ा सा और खास होता जा रहा है। परी का साथ है रात के 12 बजे तक। कुछ रोमांटिक गाने लेकर आए हैं इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

वेल फ्रेंड्स, हर किसी की लाइफ में दैट स्पेशल पर्सन जरूर होता है जिनके बारे में आप हमेशा सोचते हैं, जिनके साथ आप सब कुछ शेयर करना चाहते हैं. मे बी अ गुड न्यूज, अ बैड डे, या फिर कोई स्टूपिड सा जोक, या फिर एक रैंडम थॉट जो आपको आता है रात के 2 बजे. बस एक स्पेशल इंसान जिसके साथ आप हर एक चीज शेयर करना चाहते हैं. सो टू दैट स्पेशल समवन जो इस वक्त आपके दिल में कहीं छुप कर बैठा है, ये जो गाने हैं वो उनके एहसास को थोड़ा सा स्पेशल और बना रहे हैं. नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर योर स्पेशल समवन एंड फॉर ऑल द लिसनर्स कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ. वेल फ्रेंड्स, प्यार के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड मे बी दैट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेफिनेशंस ऑफ लव व्हेन समवन्स प्रेजेंस आपके लिए कंफर्ट बन जाता है. कभी कभार आप उन कन्वर्सेशंस को मिस करते हैं, कभी कभार आप उनके प्रेजेंस को मिस करते हैं. द वे यू लाफ्ड, द वे जो आपको वो अपना नाम बताते थे, या फिर द वे वो आपसे पूछते थे इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. कभी कभार हर कन्वर्सेशन स्पेशल फील करवाती है एंड इट्स नॉट द कन्वर्सेशन, इट्स द पर्सन. सो अभी के लिए हम बात कर रहे हैं स्पेशल फीलिंग की, स्पेशल समवन की. सो आज की रात डेडिकेटेड प्यार के नाम.

Well, talking about love, जैसे हम कहते हैं, love की feeling is strange. You can know someone for years and feel nothing, and then one ordinary day, एक conversation, एक moment, suddenly सब कुछ different feel करवाता है. So प्यार का एहसास खास और इसी एहसास को हम आप तक पहुंचा रहे हैं. Stay connected, Radio Masti के साथ.

वेल आज की रात अगर आप भी किसी खास के बारे में सोचना चाहते हैं तो उनका नाम रिक्वायर्ड नहीं, बस इन गानों के साथ आप भी उनको सोच सकते हैं, आप भी गाना उनके नाम डेडिकेट कर सकते हैं। जस्ट थिंक ऑफ दैट स्पेशल पर्सन या फिर एक सिंपल सा मैसेज दैट आई एम थिंकिंग अबाउट यू, उन्हें भी खास फील करवाएगा और ये जो गाने हैं ये प्यार की इस फीलिंग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल बनाएंगे।

और चलिए दोस्तों, प्यार की बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला. नाउ इट्स टाइम टू से गुडबाय, लेकिन गुड सॉन्ग्स कंटिन्यू होंगे ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. मुलाकात होगी आपसे जल्द, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड. दैट वाज योर लेट नाइट ग्रूव्स. मैं हूं परी आपके साथ. हैव अ ग्रेट नाइट, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे मैजिकल एंड स्टे म्यूजिकल.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
1: अरे सुन सुन।
2: यस मां।
1: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
1: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: के हैं दो गुलाब
1: एक डोर में।

0: पनवड़िया तो कन्या
1: बैठी पनवड़िया तो कन्या
0: रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर,